0: टाइम चेक सुबह के 5 बज रहे हैं।
1: वेलकम टू RM2
2: रेडियो मस्ती
1: नॉर्थ साउथ
2: 103.5
1: ईस्ट वेस्ट
2: 96.4
1: सेंटर
2: 99.4
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज तो मौसम सच में बहुत ही प्यारा और सुहाना हो रखा है, अच्छी ठंड और साथ में हल्की हल्की सी बारिश की बूंदे। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप यहाँ पे भी अच्छा सा मौसम हो रखा है जहाँ पर आप रह रहे हैं तो मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा 5499124 पर। और चलिए अब सुनते हैं पुराने नगमे जो कहते हैं सच में तन मन में जान भर देते हैं। ये गाने हैं ही इतने प्यारे कि क्या कहें। चलिए, ये बहुत ही प्यारा सा गाना सुनने को मिलेगा आपको वक्त मूवी से आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज में। तो चलिए सुनते हैं, शुरू करते हैं अपना राइज एंड शाइन मॉर्निंग प्रोग्राम।
0: राइज एंड शाइन, स्टार्ट फ्रेश, स्टे शार्प, वेक अप विद द वर्ल्ड। वेलकम टू RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:15 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम राइज एंड शाइन के साथ में। इस समय हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, थैंक यू सभी का, और सभी का वेलकम है इस प्रोग्राम में। और मुझे लग रहा है कि सारे लोग, कई लोग तो इस टाइम फुटबॉल देख रहे होंगे, और बहुत सारे जो लोग हैं उनमें से कई लोगों ने रेडियो ऑन ही किया होगा। उन्होंने भी लगा चलो भाई साथ साथ रेडियो भी सुन लेते हैं, इन्फॉर्मेशन भी तो लेनी होती है। तो मुझे पता है कि एक तरफ आप लोग ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे होंगे, कहीं कोई ना कोई लंच की तैयारी कर रहा होगा, यही कह के कि भैया भी तो ऑफिस लेके जाना है। तो बस यही है, एक दिमाग है भैया, कहाँ कहाँ निशाने लगाओगे। तो चलो कोई बात नहीं, आप अगर अपने जहाँ पे भी जो काम कर रहे हैं उसको करते रहिए, साथ साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। और इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं प्रिस्ला और रोविन कोलिन, जिनका आज हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी है, और उनको विश कर रहे हैं गासन रूबा सिक्विन एंड कृष्णा, उनको विश कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, हमेशा खुश रहो और ऐसे ही एक प्यारे से कपल बन के रहो। उसके साथ अब्दुल एंड सायरा बानो जी भी हैं, उनके लिए नेक्स्ट गाना चलेगा। सुरेश शर्मा साजदा जी जुड़े हैं अपने पूरे परिवार के साथ, ये मॉर्निंग प्रोग्राम सुन रहे हैं। रेशमा जी अपने हस्बैंड को, ये विराज जी को एक प्यारा सा प्रोग्राम में गाना सुनाना चाहती हैं, और अपनी पूरे फैमिली को भी एक गाना सुनाना चाहती हैं। तो ये सब लोगों के लिए हम गाना चलाएंगे, बट आपको इतना ही बोलेंगे जो इस समय खेतों में है उनको बस इतना ही कहेंगे। कोई बात नहीं, आप सब मेहनत जो कर रहे हैं उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू सो मच। आप इंजॉय कीजिए आपका ये गाना।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:28 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने प्रोग्राम राइज एंड शाइन के साथ में। इस समय जो लोग हमारे को सुन रहे हैं अपने घर में आराम से प्यार से और सुबह के घर के काम कर रहे हैं और वो लोग जिस टाइम ड्राइव भी कर रहे हैं और साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको बस यही कहेंगे हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रोग्राम चल रहा है, बहुत ही प्यारे से पुराने गाने यहाँ चल रहे हैं जो कि कहते हैं ना दिल को और कहते हैं मन को बहुत ही शांत और सुकून देते हैं, क्योंकि हम पूरे दिन तो इतनी सारी भाग दौड़ करते हैं पर ऐसे गाने है हमारे को एक एनर्जी दे देते हैं। कहते हैं कि कितने भी नए गाने सुन लो उसमें जो ताकत है वो तो अच्छी बात है, बट जो पुराने गाने हैं उनमें अलग ही कुछ बात है। चलिए भाई, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय साधना जी, मुकेश जी जो कि लाल माटी से हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, थैंक यू सो मच आपके जुड़ने का। जयशन हरदयाल जी भी साथ जुड़े हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं इन पुराने गानों को। कमलदीप जी भी जुड़ी हुई हैं साथ में और इंजॉय कर रही हैं पुराने गानों को। हेमलता भूजन जी और कह रही हैं कि सब अपना अपना ख्याल रखिए क्योंकि बहुत ही प्यारा सा मौसम है और ये गानों ने हमारा दिल खुश कर दिया। थैंक यू सो मच आपका इतना प्यार देने के लिए। गुलाब जगत सिंह जी साथ दे रहे हैं और अपने पूरे परिवार के साथ इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच जी। इंदिरा जी, रागिनी जी, गीता जी, आप सभी के लिए गाने चलेंगे। और अगर आपको भी कोई मैसेज भेजना है, किसी का बर्थडे है या कोई अपने दिल की बात कहनी है तो मैं यहाँ पर ही हूँ, आप भेज सकते हैं 5499124 पर।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: 5:43 हो चुके हैं. कुछ सपने और कुछ जिम्मेदारियां, उन्हें पूरा करने के लिए एक नया दिन आपके सामने है. तो चलिए देखते हैं आज सितारे क्या इशारा दे रहे हैं. सबसे पहले शुरू करते हैं.
2: Wake up with the sun and the sound of fun.
3: RM2
2: Radio Musti.
4: एरीज मेष राशि,
1: आज रुकने का नहीं आगे बढ़ने का दिन है. जिस काम को आप बहुत टाइम से टाल रहे थे उसे हाथ में लीजिए. आपकी मेहनत आपको अच्छी जगह ले जा सकती है. लकी कलर बनने का ऑरेंज, लकी नंबर है 1.
4: टॉरस ऋषभ राशि,
1: आज थोड़ा खुद को अप्रिशिएट कीजिए. हर बात में जल्दी मत कीजिए. शांत मन से लिया फैसला बेहतर रहेगा. लकी कलर है ग्रीन, लकी नंबर है 8.
4: जेमिनी मिथुन राशि,
1: आज आपकी स्माइल भी काम कर सकती है. लोगों से जुड़ने का अच्छा समय है. दिल हल्का रखिए, दिन अच्छा जाएगा. लकी कलर है येलो, लकी नंबर है 5.
4: कैंसर कर्क राशि,
1: आज भावनाओं से ताकत मिलेगी. अपने लोगों के साथ थोड़ा सा समय बिताएं. दिल से जो आप काम करेंगे वो अच्छे से होंगे और जिनकी जो बातें आप अपने परिवार से करेंगे वो भी पूरी होंगी. तो उनकी बात को सुनिए और उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए. लकी कलर बनेगा व्हाइट, लकी नंबर है 2.
4: लियो सिंह राशि,
1: आज चमकने का दिन है आपका. अपने टैलेंट को पीछे मत रखिए. कॉन्फिडेंस आपकी पहचान बनने वाला है. बिल्कुल अपनी बात को सामने रखिए, कॉन्फिडेंट होके. लकी कलर है गोल्ड, लकी नंबर है 9.
4: वर्गो कन्या राशि,
1: आज परफेक्शन नहीं प्रोग्रेस सोचिए. छोटे कदम भी बड़ी मंजिल बनाते हैं. खुद पर प्रेशर मत कीजिए. थोड़ा सा कम प्रेशर दीजिए, बट आप जो काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा हो सकता है प्रेशर हो, तो इसलिए उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने दोस्तों या अपने परिवार से बात करनी पड़ेगी. और आपका बनेगा लकी कलर ब्लू, लकी नंबर है 6.
4: लिब्रा तुला राशि,
1: आज बैलेंस बहुत जरूरी रहेगा. दिल और दिमाग दोनों की सुनिए. रिश्तों में थोड़ी सी सॉफ्टनेस रखिए. सारे काम अपने आप होंगे. कल लकी कलर बनेगा पिंक, लकी नंबर है 4.
4: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
1: आज अंदर की ताकत पहचानिए. जो चाहते हैं उसकी तरफ थोड़ा सा कदम बढ़ाइए. हिम्मत आपको साथ देगी और आपका परिवार भी आपको साथ देगा. आपके जहां पर आप काम करते हैं वो लोग भी आपका साथ देंगे, क्योंकि आप बहुत टाइम से किसी प्रोजेक्ट में बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं और उसमें आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा. तो उसके लिए रास्ता देखने के लिए आपकी हिम्मत का होना ज़रूरी है. अपने आप से खुद से कहें कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. और लकी कलर बनेगा आपका मेहरून, लकी नंबर है 7.
4: सजिटेरियस धनु राशि,
1: आज रूटीन से बाहर सोचिए. कुछ नया एक्साइटमेंट ला सकते हैं आप. एनर्जी को सही दिशा दीजिए. लकी कलर है पर्पल, लकी नंबर है 3.
4: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
1: आज डिसिप्लिन आपकी स्ट्रेंथ बनने वाला है. काम पर फोकस अच्छा रहेगा. अच्छे रिजल्ट मिलने का योग है. लकी कलर है ग्रे, लकी नंबर है 10.
4: एक्वेरियस कुंभ राशि,
1: आज अलग सोच फायदा दे सकती है. अपने आइडियाज़ दबाइए मत. अपने आइडियाज़ को किसी पेपर पे लिख लिए. और क्योंकि आप सिर्फ दिमाग की बात करते हैं, आप किसी को बताते नहीं हैं अपने आइडियाज़, तो अपने पेपर पे लिखिए. उसके ऊपर फोकस कीजिए. उसको बार बार पढ़िए, बार बार ध्यान दीजिए. छोटी छोटी बातें उस पेपर पर लिखते जाइए. आपकी जो ओरिजिनैलिटी है वही आपकी ताकत बनेगी और वही आइडियाज़ जो है आपका आगे चलकर बिजनेस बन सकता है. तो आइडियाज़ को अप्रिशिएट तो कीजिए, बट उसको लिखने की कोशिश भी कीजिए. लकी कलर बनेगा एक्वा, लकी नंबर है 11.
4: पाइसेस मीन राशि,
1: आज दिल को हल्का रखिए. जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना अच्छा महसूस होगा. खुद पर प्यार करना मत भूलिए, क्योंकि आपको प्यार तो पूरे परिवार और सारे दोस्त सारे जने आपको देते हैं, पर कई बार आप अपने आप से नाराज हो जाते हैं. तो नाराज होने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा सा अपने आप पे फोकस कीजिए. थोड़ा सा योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, या कहीं पर ऐसे आपको लगता है कि आपको जाके थोड़ा सा सुकून मिल सकता है जहां पर आप अपने साथ जुड़ सकते हैं, तो उससे बेटर क्या हो सकता है. लकी कलर बनने वाला है सी ग्रीन, लकी नंबर है 12. तो ये था आज का राशिफल. एंजॉय कीजिए अपने पुराने गाने.

0: हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती वेक अप विद द सन एंड द साउंड ऑफ फन
1: RM2
0: रेडियो मस्ती।

0: सुबह के 6 बज रहे हैं, अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार सुमायरा अकबर अली से। सुमायरा, आपको सलाम।
1: नमस्कार आदाब। साल 2024 की पहली तिमाही में मुर्शस का घाटा बेहतर हुआ, वो 1.1 बिलियन रुपए तक आ गया, यानी मूल घरेलू उत्पाद GDP का 0.6%। पिछले साल की इसी अवधि के दौरान घाटा 6.2 मिलियन रुपए था और ये घाटा GDP में 3.7% का प्रतिनिधित्व करता है। ये हालत पर्यटन और सेवाओं की बदौलत बेहतर हुई है, लेकिन मुर्शस अपने निर्यात से ज़्यादा पैदावारों का आयात करता जा रहा है। राष्ट्रीय बजट में पेंशन सुधार के सिलसिले में बहसें जारी, श्रमिक संघ का दबाव है और वो सरकार के साथ बातचीत करने की मांग कर रहा है। कल सिकोम एम्प्लॉयज यूनियन प्रेस से मुखातिब हुआ प्रवक्ता दीपक बेनीडी ने बजट में ऐलान किए गए कदमों को लेकर अपनी नारजामंदी दोहराई है। स्वास्थ्य सेवाओं में उच्च शिक्षा की तरक्की में मॉरिशस ने एक नया चरण पार किया। स्वास्थ्य मंत्रालय और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड मैनेजमेंट स्टडीज IIMM मॉरिशस के बीच सहयोग हो रहा है ताकि मॉरिशस में भावी डॉक्टरों के प्रशिक्षण को और ठोस बनाया जा सके। इस समझौते के जरिए मंत्रालय की निगरानी के तहत संस्था के मेडिकल तलबा सर शिव सागर राम गुलाम अस्पताल, खास अस्पतालों में और स्वास्थ्य केंद्रों में अपना क्लिनिकल प्रशिक्षण ले सकते हैं। वाकवा में तकामका पुल अब फिर से कार्यरत होने लगा है। ये पुल 60 से ज्यादा साल पुराना है, जिस पर दो बसें एक ही वक्त पर नहीं गुजर पाती थीं, लेकिन कार्यों के बाद अब ये पुल फिर से कार्यरत है। विदेश में कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला महामारी से निपटने के लिए इलाज की कोशिश की जाने लगी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐलान किया कि पहले मरीज की जिम्मेदारी ली गई है। कोंगो में 1400 से ज्यादा मामले पाए जा चुके हैं और 438 लोग जान से गए हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। मौसम का हाल। आम हालत, हमारे इलाके में हल्की हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। पूर्व और ऊंचे इलाकों में हल्की बारिश होगी, लेकिन दिन के दौरान मौसम साजगार रहेगा। आज रात आमतौर पर घने बादल होंगे, सेंट्रल प्लेटों पर हल्की वर्षा होगी। हवा पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगूनों के उस पार समुंदर खराब रहेगा, 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी दक्षिण और पश्चिम वाले लगूनों में, इसी वजह से दूर समुंदर में ना जाने की दरखास्त है। तापमान, सेंट्रल प्लेटू में न्यूनतम तापमान 14 से 17, अधिकतम 20 से 23, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 22, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय 6:46 पर, सूर्यास्त 5:42 पर। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार आदाब, शुभ दिन आप सभी को।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: Wake up with the sun and the sound

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 6:08 हो चुके हैं. मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सबको. भाई हम तो यही कहेंगे कि आपका जो पूरा दिन है बहुत ही अच्छा जाए. आप सुबह से कुछ ना कुछ कर रहे होंगे अपने घर में. तो अभी ये टाइम है जो कि भाई देखो, मैं अभी बाहर स्टूडियो से गई और देखा कि भैया अंधेरा छट रहा है और मॉर्निंग की रोशनी बिल्कुल आ गई है. तो आपने भी इंजॉय करना, अपनी ज़िंदगी को में भी रोशनी लानी है, तो यही टाइम होता है. और हमारे साथ इस समय बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं. नेक्स्ट गाना चलेगा हुबा हुदा त्वला एंड रोज़ एंड जागृति नंदलाल जी के लिए, जो कि क्यूपिप से हैं. ललित जी साथ दे रहे हैं यहाँ यूएसए से और कह रहे हैं कि मैं आज पुराने गानों को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ. थैंक यू सो मच आपका. इस समय हमारे

0: साथ एक प्यारे से बच्चा जिसका आज फर्स्ट जन्मदिन है, मामा वर्षा, पापा विमल, दीदी निया जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, और राम रतन राम गुलाम गोसाई फैमिली जो कि उनको विश कर रही है और कह रहे हैं कि प्लीज़ मेरे लिए एक प्यारा सा ज़रूर गाना चलाइएगा। बिल्कुल हम चलाने वाले हैं। साथ में वृंदा भंगारू जी भी साथ जुड़ी हुई हैं और इन्जॉय कर रही हैं प्रोग्राम को। साथ में हमारे साथ हैं कुमार देवी चरण जी जो कि अपने पापा श्याम देवी चरण जी को एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहते हैं और स्पेशली उनको लेकर आए हैं सी साइट और कह रहे हैं मॉर्निंग मॉर्निंग हो और परिवार साथ हो तो क्या बात है भाई। आप सबका साथ मिलता रहे और आप सारे हमारे साथ जुड़े रहें, इन्जॉय कीजिए अपने गाने। ये बहुत ही प्यारा सा गाना है दीवार फिल्म का, चलो इन्जॉय करते हैं ये वाला गाना।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musti.
3: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
3: या चुप रहूं
2: ना,
3: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 6:17 हो चुके हैं और जो लोग इस वक्त मॉर्निंग वॉक या जिम में हैं, लगे रहिए, वेट उठाइए, डंबल चलाइए, बॉडी बनाइए. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जब बॉडी फिट होती है ना तो कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है. और जो घर में है उनके पास अगर ये चीज़ें नहीं हैं अवेलेबल, जैसे कि बड़ी बड़ी वो डंबल्स नहीं होते हैं, तो आपने कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं करना है. कुछ बॉटल्स में पानी भरो, थोड़ा सा उनके साथ में वेट लो. ये भी बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपको या थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करो, बेड पर अभी भी हो तो थोड़ी सी वहाँ पर स्ट्रेचिंग करो, योगा करो, मेडिटेशन करो. सारी चीज़ें आपके हेल्थ को बहुत ही अप कर देती हैं और साथ में आपको कॉन्फिडेंस देती है. तो एंजॉय कीजिए अपने गाने. पर गानों से पहले एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है. आज माधुरी जी और विशाल जी एक दूसरे को विश कर रहे हैं.

हैं और बस यही कह रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते. जबकि विशाल जी अभी ड्राइविंग कर रहे हैं, माधुरी जी कह रही हैं ख्याल रखो अपना जब ड्राइव करते हो. मेरा थोड़ा सा दिल धक धक करता है, बट मैं कहती हूँ आप सेफ घर पहुँचे, यही सबसे बड़ी बात है. तो हम उन सभी ड्राइवर्स को जो भी ड्राइव कर रहे हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उनको यही कहेंगे हैव सेफ ड्राइव. अपने घर आओ, आराम से आओ, इन्जॉय करते करते ड्राइव करो, पर आराम से सेफली. चलिए जी, साथ में आज एक हमारे साथ बहुत ही हमारे एक प्यारे से लिसनर हैं जो हमेशा साथ देते हैं. उनका नाम है बिद्वाग विदेशी जी. आज उनका बर्थडे है तो हम भी कहेंगे और उनका पूरा परिवार उनको विश कर रहा है, बट हम कहना चाहते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि आप हमारे साथ हमेशा रहते हैं, पूरी एमबीसी की टीम की तरफ से आपके लिए.

0: अब 6:30 बजे हैं। पेश है समाचार बुलेटिन। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। साल 2026 की पहली तिमाही में मॉरिशस का घाटा बेहतर हुआ, वो 1.1 बिलियन रुपए तक आ गया, यानी मूल घरेलू उत्पाद का 0.6%, जबकि पिछले साल की इसी अवधि के दौरान घाटा 6.2 मिलियन रुपए था। राष्ट्रीय बजट में पेंशन सुधार के सिलसिले में बहसें जारी, श्रमिक संघ का दबाव है और वे सरकार के साथ बातचीत करने की मांग कर रहे हैं। कल सीकोम एम्प्लॉयज यूनियन प्रेस से मुखातिब हुआ। वाकुआ में तकामका पुल फिर से गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। कई महीनों के कार्यों के बाद इस पुल पर अब बड़े वाहन एक साथ दोनों तरफ गुजर सकते हैं। और कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला से निपटने के लिए इलाज की पहली कोशिश। नमस्कार, आदाब। बजट 2026-2027 के जरिए मॉरिशस अपने सार्वजनिक फाइनेंस को बेहतर कर सकेगा। मॉरिशस के लिए BAA फ्री का नोट बरकरार रखते हुए मूडीज के जायजे का ये नतीजा है। अगरचे इस एजेंसी ने घाटे को कम करने और कर्ज को स्थिर बनाने में सरकार की कोशिशों की सराहना की, उसका मानना है कि इस राह में कई खतरे पैदा हो सकते हैं, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ के मद्देनजर। अब्दुल बुलाकी की रिपोर्ट पर रजनी बेकर का विवरण।
1: बजट 2026-2027 सरकार की बजट स्ट्रेटेजी का एक अहम पड़ाव है। मूडीज की ओर से पिछले जून महीने के अंत में साकार किए गए मूल्यांकन में इस बात का उल्लेख। रैंकिंग एजेंसी ने पाया कि वित्तीय मजबूतीकरण को लेकर ठोस प्रगति हुई है। इसके अतिरिक्त मूडीज ने इस बात पर भी जोर दिया कि देश की आय को बढ़ाने के वास्ते कदम निर्धारित है। इनमें सबसे ज्यादा आय प्राप्त करने वालों के लिए 35% की नई कर लागू की बात शामिल, डिजिटल सेवाओं के विदेशी सप्लायरों के लिए टैक्सेशन भी शामिल। इसके अलावा मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी में ढांचागत सुधार भी सम्मिलित। अर्थशास्त्री डॉक्टर भविष जगन्नाथ ने कहा,
2: Moody's l'avait commencé par saluer le progrès du pays en matière d'assainissement budgétaire. L'avait souligné dans le rapport là et la réduction du déficit budgétaire à 3,7% du PIB. Moody's relève dans son rapport que l'exécution budgétaire dépasse la prévision soutenue par une baisse de la dépense courante plus marquée qu'anticipée. En conséquence, la ratio de la dette publique par rapport du PIB commence à stabiliser et l'IP inverse ainsi la tendance à la détérioration que Moody's s'y prévoit.
1: लेकिन एजेंसी सावधान है। उसका कहना है कि मॉरिशस के लिए एक नकारात्मक दृष्टिकोण BAA3 का नोट बरकरार है। उसका मानना है कि कई अनिश्चितताएं

0: बनी हुई है। मूडीज के अनुसार घाटे की कमी का एक अहम भाग शागोस द्वीप समूह के समझौते की प्रतीक्षित आय पर भी निर्भर है। इस विशेष आय के बिना घाटा जीडीपी के 5% से नजदीक पहुंच सकता है। इसके अलावा एजेंसी ने पेंशन सुधार से जुड़ी चुनौतियों का भी जिक्र किया, जिसे भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है, और साथ में हाईली क्वालिफाइड पेशेवरों के लिए नई वित्तीय क्षमताओं के प्रभाव भी हैं और योग्यताओं के पलायन के बढ़ते खतरे भी। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के CEO पॉल बेकर ने कहा,
1: are relatively high. It's high time to reform the system. Maybe as an economist, how you view the pension reform in Mauritius?
2: Yes, I mean, so Mauritius, like most countries, is facing an aging population. So a smaller tax base to pay towards and to contribute towards government revenue, and yet higher payouts. And so that is not unusual to be a burden on most countries. So some sort of reform may indeed be needed. Inevitably, maybe not this year or next year, but there will be need to reform the pension system in Mauritius because of this aging population.
1: The policy drift risk mentioned by Moody's, you want to add something else?
2: One of the issues is the changes in taxation in Mauritius. So there is a much higher rate for those that earn quite a lot, and that is likely to affect confidence and spending. And so we can expect, I think, much lower growth rates than was forecasted in the budget.
0: Moody's ने ये भी कहा कि मॉरिशस में सार्वजनिक फाइनेंस में सुधार इस बात पर भी टिका हुआ है कि सरकार किस तरह आर्थिक एवं राजनीतिक खतरों का सामना करते हुए घोषित सुधारों को अमल में लाती है। अंत में मूडीज ने वैश्विक अर्थतंत्र की अनिश्चितताओं को लेकर सचेत किया, जैसे कि जियोपॉलिटिकल तनाव है, सप्लाई चेन में रुकावटें और रुपए के भाव का डिप्रिसिएशन, जिनका असर देश की वृद्धि की संभावनाओं पर पड़ सकती है।
3: साल 2026 की पहली तिमाही में मॉरिशस का घाटा बेहतर हुआ है, वो 1.1 बिलियन रुपए तक आ गया, यानी मूल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 0.6%। पिछले साल की इसी अवधि के दौरान घाटा 6.2 मिलियन रुपए था और ये घाटा जीडीपी में 3.7% का प्रतिनिधित्व करता था। स्पष्ट रूप से देश में आने वाले पैसों के मुकाबले कम पैसे बाहर गए। ये हालत पर्यटन और सेवाओं की बदौलत बेहतर हुई है, लेकिन मॉरिशस अपने निर्यात से ज्यादा पैदावारों का आयात करता जा रहा है। आद्रियन वालिया, अभी उदय।
4: करंट डेफिसिट का मतलब है उन पैसे का अंतर जो देश के भीतर आता है और जो पैसा देश से बाहर यानी कि विदेश जाता है। पैसा देश में तब आता है जब उदाहरण के लिए विदेशी पर्यटक मॉरिशस में आकर खर्च करते हैं, या जब हमारा देश अपनी चीजें विदेशों में बेचता है यानी कि निर्यात करता है। पैसा देश से बाहर तब जाता है जब मॉरिशस बाहर से सामान खरीदता है यानी कि आयात करता है, जैसे कि ईंधन, गाड़ियां, खाने पीने की चीजें या फिर मशीनें। साल 2026 की पहली तिमाही में ये चालू खाता घाटा घटकर 1.1 बिलियन रुपए रह गया है। पिछले साल इसी अवधि में ये घाटा 6.2 बिलियन रुपए का था। इसका मतलब ये है कि स्थिति में सुधार हुआ है, परंतु इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि मॉरिशस खरीदने से ज्यादा बेच रहा है। देश भी निर्यात से कहीं ज्यादा बाहर से सामान खरीद रहा है। जिस चीज ने मॉरिशस की सबसे ज्यादा मदद की है वह है सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र, जिसमें 35 बिलियन रुपए का मुनाफा हुआ है। इसमें पर्यटन ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि पर्यटन से होने वाली कमाई में 28% की वृद्धि दर्ज की गई है। मॉरिशस अब भी बाहर से सामान मंगाने पर बहुत पैसा खर्च कर रहा है, परंतु पर्यटन और सेवा क्षेत्र की बदौलत साल 2026 की पहली तिमाही में चालू खाता घाटा काफी हद तक कम हो गया है।
3: राष्ट्रीय बजट में पेंशन सुधार के सिलसिले में बहसें जारी हैं। श्रमिक संघ का दबाव है और वे सरकार के साथ बातचीत करने की मांग कर रहे हैं। कल सीकम एम्प्लॉयज यूनियन प्रेस से मुखातिब हुआ प्रवक्ता दीपक बेनीदी ने बजट में ऐलान किए गए कदमों को लेकर अपनी नारजामंदी दोहराई है। उनका कहना है कि सुधार यूनिवर्सल पेंशन के आदर्श पर सवाल करता है और इससे भविष्य के रिटायर्ड लोगों को नुकसान होगा। श्रमिक संघ बदलाव की मांग कर रहा है और सामाजिक

0: ठेकेदारों के साथ सलाह मशवरा करने की दरख्वास्त कर रहा है। रजनी बेकर की जबानी दीपक बिनी दीन को सुनते हैं। अनिशा मदयानी उनसे बात की।
1: Nous peut dire retourne tout pareil comme avant. Donc retourne nos pensions à l'âge de 60 ans.
2: दीपक बिनी दीन ने कहा, यही मांग कर रहे हैं कि सब पहले की तरह वापस किया जाए, पेंशन प्राप्त करने की उम्र 60 वर्ष तक किया जाए, कोई सुधार न लाया जाए, कुछ लोगों को कम पेंशन मिले, एक व्यक्ति को उसका 15,500 रुपए मिलना चाहिए। दूसरी बात, पेंशन फंड को न छुए, एनपीपीएफ कायम न किया जाए। एनपीपीएफ से बिल्कुल सहमत नहीं है, परामर्श बातचीत नहीं की गई है, सिकम से फंड लेकर इस्तेमाल किया जाए या एनपीपीएफ में लगाया जाए। यही चाहते हैं कि फिर से शुरुआत करें, वित्त मंत्री के साथ बातचीत करने की मांग कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी
1: हैं।
0: वाकवा में तकामाका पुल अब फिर से कार्यरत होने लगा है। ये पुल 60 से ज्यादा साल पुराना है, जिस पर दो बसें एक ही वक्त दो लेन पर नहीं गुजर पाती थीं। कई महीनों के कार्यों के बाद कल पुल का फिर से उद्घाटन किया गया है।
3: वाकवा और लामारी को जोड़ने वाले इस मार्ग से हर दिन बड़ी संख्या में वाहन गुजरती हैं, लेकिन अब तक ताकामाका पुल से होकर गुजरना लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ था। पुराना पुल मौजूदा यातायात के लिए काफी तंग हो गया था, विशेषकर बसों के आमने सामने आने पर आवाजाही मुश्किल हो जाती थी। साथ ही पुल की संरचना भी जर्जर होने लगी थी, इसलिए पुल का पूरी तरह पुनर्निर्माण किया गया और इसे चौड़ा किया गया। इस पुल की चौड़ाई 5.420 मीटर हुआ करता था, अब निर्माण के बाद इसको 6.750 मीटर तक बढ़ाया गया है। ये पुल पहले से ही नीचे से ढहने लगा था, लोहे दम तोड़ने लगे थे, पर मरम्मत के दौरान इसे पूरी तरह मजबूत बनाया गया है। नई व्यवस्था से खासकर व्यस्त समय में यातायात प्रबंधन और आसान हो जाएगा। ये पुल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी वाहन जोल से निकलते हुए सावोई की ओर बढ़ती है, इसी मार्ग से जाती है। ये एक रणनीतिक जगह है जहां बहुत बाशिंदे और कारोबार मौजूद हैं। प्रतिदिन कई हजार वाहन यहां से गुजरती हैं। जब निर्माण कार्य जारी था तो एक डायवर्शन लाया गया था, जिसके कारण यातायात में रुकावट हो रही थी। अब सब सुगम हो गया है। वाहन चालकों ने भी इस बदलाव का स्वागत किया। इस नए पुल के साथ अधिकारियों को उम्मीद है कि वाकवा क्षेत्र की प्रमुख यातायात समस्याओं में से एक का स्थायी समाधान होगा और लोगों को अधिक सुगम, सुरक्षित तथा आज की यातायात आवश्यकताओं के अनुरूप सफर मिल सकेगा।
0: स्वास्थ्य सेवाओं और उच्च शिक्षा की तरक्की में मॉरीशस ने एक नया चरण पार किया। स्वास्थ्य मंत्रालय और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड मैनेजमेंट स्टडीज IIMM मॉरीशस के बीच सहयोग हो रहा है, ताकि मॉरीशस में भावी डॉक्टरों के प्रशिक्षण को और ठोस बनाया जा सके। इस समझौते के जरिए मंत्रालय की निगरानी के तहत संस्था के मेडिकल तलबा सर शिव सागर राम गुलाम अस्पताल और दूसरे खास अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केंद्रों में अपना क्लिनिकल प्रशिक्षण ले सकते हैं। अफ्रीका और हिंद महासागर इलाके में मॉरीशस को एक इलाकाई मेडिकल प्रशिक्षण हब बनाने की कटिबद्धता में ये पहल ली गई है। गए सालों में ओलंपिक मॉरीशस में काफ़ी आम बन गया है। नोवो नोडिस्क द्वारा औपचारिक तौर पर लॉन्च होने के बाद ये इंजेक्शन डायबिटीज टाइप 2 का इलाज करने में मदद देता है। मॉरीशस में 5 मोशन पीछे एक व्यक्ति डायबिटीज का शिकार है। अनुलाजस फिर से आरटीओ कंपनी के सीईओ के पद पर फायज हुए हैं। बुध को आईबीएल ग्रुप के सीईओ की औपचारिक नियुक्ति हुई। अनुलाजस को इस क्षेत्र में तजुर्बा है। अप्रैल 2018 से 2022 तक वो ये जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। ग्रुप की एक औपचारिक विज्ञप्ति में इस बात की जानकारी है कि जेरोम दे शातोनफ ने अवकाश ले लिया है। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला महामारी से निपटने के लिए इलाज की कोशिश की जाने लगी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐलान किया कि पहले मरीज की जिम्मेदारी ली गई। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 1400 से ज्यादा मामले पाए जा चुके हैं और 438 लोग जान से गए हैं। अभी तक वायरस के खिलाफ कोई टीका विकसित नहीं है। थाईलैंड के उत्तर पूर्व में एक

सड़क हादसा हुआ। 9 मॉन्क्स की मौत हुई। एक 11 साल का लड़का गाड़ी चला रहा था, उसने अपने माँ बाप की इजाज़त के बगैर ट्रक लिया। जापान की प्रधानमंत्री 16वें जापान भारत शिखर वार्ता में हिस्सा लेने के लिए भारत के औपचारिक दौरे पर हैं। कल 16 समझौतों पर दस्तखत किए गए। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची के बीच एक उच्च स्तरीय मुलाकात हुई। रणनीतिक, टेक्नोलॉजिकल और आर्थिक रिश्तों को मजबूत करते हुए सप्लाई चेन, नवीनीकरण और अनुसंधान पर जोर दिया गया।

और अब मौसम की बात आम हालत हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान आज आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा पूर्व और ऊंचे इलाकों में हल्की बारिश होगी और दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा रात को आमतौर पर घने बादल होंगे सेंट्रल प्लेटो पर हल्की वर्षा होगी हवा पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा 2 मीटर 50 ऊंची लहरें उठेंगी दक्षिण और पश्चिम वाले लगूनों में दूर समुद्र में ना जाने की दरखास्त है तापमान सेंट्रल प्लेटो में न्यूनतम तापमान 14 से 17 अधिकतम 20 से 23 साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 22 अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा आज शाम 5:42 पर सूरज ढल जाएगा

फुटबॉल की ये खबर सुनिए, पुर्तगाल ने कल क्रोएशिया को 2-1 से हराया है। स्पेन और ऑस्ट्रिया के मैच में स्पेन की 3-0 से जीत हुई और अभी सुबह 7 बजे स्विट्जरलैंड अल्जीरिया के खिलाफ खेलने वाला है। आज की सुर्खियां एक बार फिर से सुनिए। साल 2026 की पहली तिमाही में मॉरिशस का घाटा बेहतर हुआ, वो 1.1 बिलियन रुपए तक आ गया है, यानी मूल घरेलू उत्पाद GDP का 0.6%, जबकि पिछले साल की इसी अवधि के दौरान घाटा 6.2 मिलियन रुपए था। राष्ट्रीय बजट में पेंशन सुधार के सिलसिले में बहसें जारी, श्रमिक संघ का दबाव है और वो सरकार के साथ बातचीत करने की मांग कर रहे हैं। सिकोम एम्प्लॉयज यूनियन प्रेस से मुखातिब हुआ। वाकवा में तकामाका पुल फिर से गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। कई महीनों के कार्यों के बाद इस पुल पर अब बड़े वाहन एक साथ दोनों तरफ गुजर सकते हैं। और कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एबोला से निपटने के लिए इलाज की पहली कोशिश। तो ये थी अब तक की खबरें। आप तक ये बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभागों और हमारे तकनीकी साथी फैजान नूरदाली की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार और आदाब, इजाजत दीजिए। अब शोक समाचार सुनिए। रॉयल रोड त्यागूज में 73 साल के 73 years old श्री प्रकाश गोबिन जो विनोद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज एक बजे इनके घर रॉयल रोड त्यागूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआमौशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 1 PM। शिवाला रोड बुआगूज पोम्पलेमूस में 60 साल के 60 years old श्री विश्वजीत बिकम जो गौसों के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल डेढ़ बजे इनकी बहन पिमकी बिकम के घर शिवाला रोड बुआगूज पोम्पलेमूस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पोम्पलेमूस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमारो एट 1:30 PM। सिमेट्री रोड प्लानमान्यो में 36 साल के 36 years old श्री विकीश बुदन जो इशले के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थ है कल सुबह 10 बजे इनकी माँ संजया रापूजी के घर सिमेट्री रोड प्लानमान्यो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लानमान्यो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमारो 10 AM। टेम्पल रोड आमोरी में 82 साल के 82 years old श्री मोदी मुदले वायापुरी जो राजू के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज एक बजे इनकी पत्नी माया वायापुरी के घर टेम्पल रोड आमोरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आमोरी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी।

0: क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। ऋषि दयानंद लेन मौलाशो में 76 साल के 76 years old श्री सुलेश गुकुलक, श्री सुलेश गुकुलक जो सुलेश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और SSR अस्पताल के पूर्व अटेंडेंट थे कि मृत्यु हो गई हैं और थे आज 11 बजे इनकी पत्नी माला गोकुलक के घर ऋषि दयानंद लेन मौलाशो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए क्रिमेशन ग्राउंड इजी दो कोज की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। नंबर 13 ए नंबर 13 ए एवेन्यू कार्डिनल सुदना 92 में 89 साल के 89 years old श्री चंद्रदत्त रामबारन, श्री चंद्रदत्त रामबारन जो पानंद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं और थी आज 11 बजे एलियन सन रॉयल रोड बुबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फीनो वाकवा की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। रामलगन स्ट्रीट बिजुकाप में 54 साल के 54 years old श्री धीरा जीतू जो अजय के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं और थी आज एक बजे के घर रामलगन स्ट्रीट बेजुकाप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमौते बेलोम्ब की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। कालीचरण लेन कागोलालियान वाकवा में 82 साल के 82 years old श्री अभिमग्नू सिबनाथ जो पांडुमन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं और थी आज 11 बजे के बेटे किरण सिबनाथ के घर कालीचरण लेन कागोलालियान वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आली भैयों की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। बुदन रोड पेलघा सेवास्तोपुर में 62 साल की 62 years old श्रीमती राजवंती सिम रिकिया जो सुनीता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं और थी आज 11 बजे इनकी बेटी मीनाक्षी रघु के घर बुरन रोड पेलघा सेवास्तोपुर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंडे मास्क की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। SSR लेन पोला शेयर नथोदाम में 75 साल की 75 years old श्रीमती कृष्णावती थीलू पैदाशी नाम जिलाल जो रानी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं और थी आज 10 बजे के बेटे नीलेश टीलू के घर SSR लेन पोला शेया नथोदाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआमोशों की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। नंबर 36 ओंरी ओंद्रे शापरों स्ट्रीट वाले दे प्रत्र में 85 साल के 85 years old श्री सदा सिवन गोविंदा स्वामी जो तोंबिला के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं और थी आज एक बजे इनके घर नंबर 36 ओंरी ओंद्रे शापरों स्ट्रीट वाले दे प्रत्र से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैन जॉर्ज लेसालिन की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रॉयल रोड पालमा 84 में 82 साल की 82 years old श्रीमती लीलाबाई महादू जो नीलाबाई के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं कि मृत्यु हो गई हैं और थी आज एक बजे इनके बेटे राज महादू के घर से उठाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। लुलजी लेन मोताबा में 77 साल के 77 years old श्री उदय सिंह ओबिल सिंह जो उदय के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं और थी आज एक बजे इनकी पत्नी माला उबिल सिंह के घर लुलजी लेन मोताबा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताबा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। इग्नर रोड रुजिल में 65 साल के 65 years old श्री अनोथ गोपुल जो मनोज के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं और थी आज दो बजे के घर इग्नर रोड रुजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोदगौद की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM। कोऑपरेटिव रोड मेलरोज में 79 साल की 79 years old श्रीमती धनवंती सिबोरत पैदाइशी नाम सरमन जो मांटी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं कि मृत्यु हो गई हैं और थी आज से पहले 3 बजे इनके बेटे सुभाष सिबोरत के घर कोऑपरेटिव रोड में लगो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौदी मास की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डी एट 3 पीएम। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

मैं थी पूनम आपके साथ राइज एंड शाइन पर. अगले साथ आपको मिलेगा नीतू शाह का. जुड़े रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिएगा. मुझे दीजिए इजाजत. बाय बाय, टेक केयर.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: जो भी कहो भाई, सुबह सुबह प्रभु का नाम लेते हो ना तो सब कुछ अच्छा ही होता है। सोसियावर पति रामचंद्र की जय। सार्वजनिक 4 मिनट हुए हैं ऑलरेडी 3rd of July। ओ माय गॉड, टाइम इज फ्लाइंग, लेकिन हम आपके साथ ही

हैं और हमेशा रहेंगे। जी हाँ, फ्राइडे मॉर्निंग है और फ्राइडे का इंतजार हम सब करते हैं, क्योंकि यूपी जो वीकेंड आता है ना, उसमें हम धमाल करते हैं, मस्ती करते हैं। बाय द वे, यू आर वेल ट्यून्ड टू रेडियो मस्ती एंड नीतू आपके साथ। हर फ्राइडे मॉर्निंग को तो हम आपके साथ रहेंगे ही, अभी से लेकर सुबह के 9 बजे तक। व्हाटएवर यू माइट बी स्टिल ट्यून, चिल माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट चिल और अपनी मॉर्निंग को गुड गुड बनाते चले, क्योंकि ऑलरेडी आप तो राइज एंड शाइन हो चुके हैं। बस अभी से लेकर 9 बजे तक विद द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक कुछ अच्छी अच्छी बातें होंगी। बाय द वे, आज है 3rd of July, सो आज है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। ओ, प्लास्टिक के बारे में हमने इतना कुछ सुना है, सो प्लीज जितना हो सके अपने एनवायरनमेंट, पर्यावरण को आप सेफ सुरक्षित रहे, और जो भी आप यूज करते हो आप सोच समझ कर सेफली यूज करें, ताकि नो एनवायरनमेंट की हानि हो और ना ही हमारी भी।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: That's the magic of Bollywood, भाई. कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं. कभी गुजरात, कभी पंजाब, कभी मॉरिशस भी.

Whatever you might be still well tuned, 7:14 हुए हैं, going to work. वैसे आज सुबह सुबह जो बा रहे थे तो मौसम इतना सुहाना था. हाँ ठंड तो है, सर्दी का मौसम, I just love the मौसम. सर्दी हो गर्मी हो जो भी हो आप enjoy कीजिएगा, life is so beautiful. कहते हैं कि life is short और हर घड़ी हर दिन को आप ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, नहीं तो बस करो वरना गाने लग जाऊंगी. वैसे मॉर्निंग जब आती है तो कोई नई उम्मीद ही लेकर आती है, एंड कल जो हुआ सो बीत गया, उसको भूल जाओ. भूल तो नहीं पाते हैं लेकिन हाँ आगे बढ़ना, दैट्स लाइफ. एंड नई ताजगी के साथ नई सोच पिलाती है, और हमेशा आप दिमाग में ठान लो कि अगर हम अच्छे सोचेंगे यानी कि अच्छी सोच रखेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा. सो व्हाटएवर यू माइट बी स्टिल टर्न 5499 1294 पर बहुत सारे मैसेजेस, स्पेशली जो बर्थडे विशेस हैं आपके मैसेजेस के लिए थैंक यू. एंड स्टिल टर्न, डू नॉट स्किप योर ब्रेकफास्ट. हाँ ब्रेकफास्ट करके ही आप घर से निकले.

0: Very good.
1: A good beat for your morning show. RM2.
2: Radio Musti.
0: देखो भाई, हेल्दी रहना है, वेरी गुड. आप एक्सरसाइज कीजिए, जिम जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, लेकिन हाँ, डांस भी इज अ फॉर्म ऑफ इन, यानी कि जो आप जिम्नास्टिक कर सकते हो, आप हेल्दी रह सकते हो और एक्सरसाइज भी कर सकते हो डांस म्यूजिक के साथ. और हम तो रोज करते हैं भाई, 11/7 जैसे कहते हैं, 24/7 नहीं, तो कहाँ गए 24/7. ऑफकोर्स यहाँ पर 7:30 बज चुके हैं एंड लेट्स गो टू बी टाउन. और बी टाउन से यहाँ पर खबर आ रही है कि आलिया भट्ट एंड शर्बरी स्पाई थ्रिलर, फाइनली ये जो यशराज फिल्म स्पाई वर्स है अल्फा इज ऑलरेडी रिलीज्ड और थिएटर्स में भी आ चुके हैं विद द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट फीमेल लेड स्पाई एक्शन इन द फ्रेंचाइज. और हमने जिगरा में देखा था आलिया को, कैसे दमदार उन्होंने एक्टिंग की थी. और इस मूवी में आलिया एंड शर्वरी के साथ साथ जो दो असासिन स्पाइस का रोल निभा रही है, इसमें बॉबी डेओल भी नजर आ रहे हैं एंड एज द एंटागोनिस्ट we have Anil Kapoor in a pivotal role as well. Wow, ये तो लग रही है धासू मूवी. एंड डायरेक्टेड बाय शिव रावेल. एंड ये जो डायरेक्टर, ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन नेटफ्लिक्स सीरीज द रेलवे मैन. बस अल्फा ये जो मूवी है इज कनेक्टेड टू द लार्जर यशराज फिल्म्स स्पाई यूनिवर्स थ्रू द प्रेजेंस ऑफ अनिल कपूर, जो वॉर 2 में भी नजर आए थे. एंड कमेयो रोल में ऋतिक रोशन भी नजर आए थे. क्यों एक्टर नहीं बन सकते थे उसमें? नहीं, दो ऑलरेडी लीड हीरोइंस है तो उनका रोल शायद लेकिन उतना ही जबरदस्त होगा. और आज कबीर फॉर फिल्म्स एंड ये मूवी आज रिलीज हो गई है एंड इवन फुल 2 days ऑफ एडवांस बुकिंग भी हो चुकी है. आज भी नो मानसून सीजन चल रहा है मुंबई में, इंडिया में, लेकिन तब भी ये मूवी काफ़ी जैसे कहते हैं धांसू तो है ही और बहुत उम्मीद है इसके साथ. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट.

0: to Mr. Rajiv Vakari. A very good morning. Happy birthday to you. आप surprise हो गए. आपको लगा सच्ची में आपसे सवाल पूछा जा रहा है. It's a survey. और आपने सही सही जवाब दिया भी. अब सोच समझ कर दिन में इतनी चाय पीते हैं हम. All right. ये surprise आपकी तरफ से है बिंदिया एंड सोना कालू from Mamsar Jan Goodlands. मैं सोच ही रही थी मैं कैसे आपको surprise करूँ, क्या बात करूँ, क्या करूँ, लेकिन आप फंस गए हमारी जाल में. लेकिन it was a really good surprise to you. And
1: thank you.
0: आप रहते हैं थियोल. अपने बारे में कुछ बताए प्लीज.
1: अभी मैं तो बीमार हूँ.
0: अभी आप बीमार? ओरे बाबा, आज आपका बर्थडे है. लेकिन चलिए, आपको अच्छा सरप्राइज मिल गया है. एंड वेल, आपको हम बता देते हैं कि ये जो सरप्राइज है इट्स फ्रॉम लुलू हाइपर एंड वी आर डिलाइटेड टू सेलिब्रेट योर स्पेशल डे विद लव एंड लॉफ्टर. सो आपको लुलू हाइपर की तरफ से मिल रहा है वाउचर. और आप बस ऐसे ही मस्त होकर बिंदास होकर, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है. एंड यू वांट टू से समथिंग टू योर डियर वन स्पेशल जिन्होंने आपको सरप्राइज किया, बिंदिया, सोना कालू एंड योर डियर वंस.
1: Yes, thank you for the surprise.
0: All right, तो चलिए. और जब सरप्राइज ऐसे अच्छे हो तो मूड एकदम टकाटक ही बन जाता है. सो डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और अपना ख्याल रखिएगा प्लीज. ओके, बहुत शुक्रिया. इट्स आवर प्लेजर. थैंक यू सो मच. एंड दवा वगैरह पीकर आप अपना जो गातो है, अपना वाउचर है, आप उसको एंजॉय कीजिएगा. ऑल राइट.
1: All right, thank you very much.
0: Thank you so much. Aapko bhi. And bas, have a nice day ahead. Take care. Bye-bye.
1: Okay, bye. Thank you.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: ऑलरेडी 744 चली स्पोर्ट्स की दुनिया में. आज यू नो कि अभी तो वर्ल्ड कप चल रहा है एंड जो मोड आ गया है क्वाइट डिसाइसिव एंड क्या कुछ हो रहा है. सुबह सुबह मैच भी चल रहे हैं ना. लेट्स नो मोर अबाउट दिस. गुड मॉर्निंग अरविंद.
4: गुड मॉर्निंग लिसनर्स. वैसे इस समय वर्ल्ड कप कप ऑफ टी या फिर कप ऑफ कॉफी के साथ मैच चल रहा है इसी समय अभी स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया के बीच. 7 बजे मैच शुरू हुआ है और स्विट्जरलैंड 1-0 से आगे हैं. इस पर आपको रिजल्ट देते रहेंगे समय समय पर. कल स्पेन और पोर्टुगल वर्ल्ड कप के लास्ट 16 में पहुंचे जहां ऑस्ट्रिया को हराने में स्पेन को कोई पेन कोई खास कठिनाई नहीं हुई. वहीं पर पोर्टुगल को बचाया एक विवादास्पद एक कंट्रोवर्शियल वार डिसीजन ने. स्पेन 3 ऑस्ट्रिया 0. 16 साल बाद स्पेन की टीम बेस्ट ऑफ 16 में आ पाई. मिकेल ओयाजाबाल का डबल रहा एक गोल पेड्रो पोरो का. इस वर्ल्ड कप में स्पेन पर अभी तक कोई गोल स्कोर नहीं कर पाया है. डिफेंस अटूट है. लामिन यमाल गोल नहीं स्कोर कर पाया पर कमाल का परफॉर्मेंस रहा उसकी ओर से. लास्ट 16 में स्पेन का सामना पोर्टुगल से होगा. 2-1 से क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम ने क्रोएशिया को हराया. सब कुछ बहुत कुछ सेकंड हाफ में हुआ. क्रोएशिया ने पहला गोल स्कोर किया पेरिसिच के जरिए. फिर पेनाल्टी पर रोनाल्डो ने इक्वलाइज किया और इंजरी टाइम में रामोस का गोल. वह ड्रामा रहा इस मैच में क्रोएशिया के लिए. वाजोल ने अंतिम सेकंड में गोल स्कोर किया. लंबा वा चेक के बाद गोल इनकार कर दिया गया. कई फुटबॉल पंडित फुटबॉल एक्सपर्ट इस फैसले का विरोध कर रहे हैं. वा का वार क्रोएशिया पर भारी पड़ा. पोर्टुगल क्वालिफाई स्पेन इंतजार कर रहा है. आज सुबह 7 बजे से जिसमें मैंने बताया स्विट्जरलैंड अल्जीरिया. स्विट्जरलैंड 1-0 से आगे है. फिर रात के 10 बजे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इजिप्ट और कल सुबह 2 बजे अर्जेंटीना वर्सेस केप वर्दे. 5:30 बजे 5:30 AM कोलंबिया वर्सेस गाना और कल रात लास्ट 16 शुरू. 9 बजे कनाडा वर्सेस मोरक्को. रात्रि के 1 बजे पैराग्वे वर्सेस फ्रांस. फ्रांस न्यूज. रिलेगेशन से बचने के बाद इस सीजन टोटनहम हॉटस्पर फुल तैयारी के साथ आना चाहता है. एक के बाद एक नए खिलाड़ी साइन किए जा रहे हैं. स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट स्पर्स की ओर से 237 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग खर्च किए जा चुके हैं. अभी और खरीदना है. लेटेस्ट 100 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर तुनाली के लिए डील लगभग डन है. मैनचेस्टर यूनाइटेड देखता रह गया. माचुस फर्नांडेज टोटनहम हॉटस्पर में चला गया. अब द रेड डेविल्स ब्राइटन के मिडफील्डर कार्लोस बालेबा के पीछे है. आर्सेनल न्यूकासल यूनाइटेड से ब्रूनो गुमारेस के लिए 60 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग देने के लिए तैयार है. टेनिस में विंबलडन ओपन में कल श्वेटेक बेरेटिनी रिबाकिना कीज बेरेव डिमित्रोव फ्रिट्स जोदा अनिमिसोवा चाफोए डेमिनो इन सभी की जीत हुई. आज के मैचों में जोकोविच रिंडनर्च साबालेंका ओस्तापेंको ओगा अयासिमे जैंग सीना ब्रुक्सबी और लियू खेलेगी गोफ के खिलाफ. क्रिकेट में वीमेन्स T20 वर्ल्ड कप का फाइनल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा. कल इंग्लैंड की महिला टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल के लिए टिकट बुक किया. सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. 8:30 बजे फिर से मुलाकात होगी विद द वर्ल्ड कप मैगजीन. टिल देन एंजॉय द म्यूजिक. या फिर मैच भी चल रहा है अभी स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया के बीच. जैसे मैंने कहा शुरू में वर्ल्ड कप ऑफ टी या फिर कप ऑफ कॉफी के साथ. टेक केयर.
3: चुस्कियां लेते चलो. थैंक यू अरविंद.
0: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert.
5: Mega promo code Quality Decor. Tiles 30x30. Mega deal, low tiles 60x60. Super sales, low granite quartz. Ricasse low lavo. La lumière moderne, prix soc.

0: time to Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
2: घड़ी मिलाते चले सुबह के ठीक 8 बजे हैं।

0: आवाजा समाचार सुनजा साल 2026 के पहला तिमाही में मुर्शस के घाटा बेहतर होल बाते उ एगो दशमलव एगो बिलियन रुपए ले आवता यानी मूल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 0.6% गल बरीस के यही अवधि के दौरान घाटा 6.2 मिलियन रुपए था और ई घाटा जीडीपी में 3.7% के प्रतिनिधित्व करथवंजा स्पष्ट रूप से देश में आए होला पैसा के मुकाबले कम पैसा बाहर गलबा ई हालत पर्यटन और सेवा के बदौलत बेहतर होलबा पर मुर्शस अपन निर्यात से जस्ती पैदावार के आयात करल जात बाती स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के तरक्की में मुर्शस ने एगो नवाचरण पार करल स्वास्थ्य मंत्रालय और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड मैनेजमेंट स्टडीज IIMM मुर्शस के बीच सहयोग होलबा ताकि मुर्शस में भावी डॉक्टर लोग के प्रशिक्षण के और ठोस बनाए सकेला इस समझौता के जरिए मंत्रालय के निगरानी के तहत संस्था के मेडिकल तलबा सर शिव सागर राम गुलाम अस्पताल दूसर खास अस्पताल में और स्वास्थ्य केंद्र में अपन क्लिनिकल प्रशिक्षण ले सकेबा वाकवा के पोताका माका पुल फेनों से कार्यरत होलबा ई पुल 60 से जस्ती बरिस पुराना है जे पर एगो वक्त दू बस साथ नहीं गुजर पावेला कई महीना के कार्य के बाद कल से पुल फिनो से कार्यरत बाती विदेश में कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एबोला महामारी से निपटने खातिर इलाज के कोशिश करल जाए विश्व स्वास्थ्य संगठन ऐलान करेला कि पहला मरीज के जिम्मेदारी लेवल गल कोंगो में 1400 जस्ती मामला पावल गल और 438 जना के मौत हो गल बाती तो ये रहल समाचार नमस्ते और सलाम
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Potential suppliers, contractors and consultants, now you can register online with the Mauritius Broadcasting Corporation to be able to supply goods, works, services and consultancy services. TV contents such as films, TV serials, local productions, amongst others. TV broadcasting equipment and accessories including spare parts. All details and conditions are available on MBC's website mbc.mu and on MBC's Facebook page. To register online, all relevant documents and requested information should be uploaded through MBC's website or the Procurement Policy Officer's website. Deadline for registration is the 31st of July 2026.

0: हम भी कर रहे हैं जुम्बा जुम्बा जुम्बा नाच रहे हैं, वो भी बैठे बैठे भाई आप भी करो ना थोड़ी सी कसरत, आप ही करो देखो लाइफ कितनी बेहतर से बेहतरीन हो जाती है। 8:08, वेलकम बैक टू रेडियो मस्ती। वैसे मौसम का हाल क्या है?
1: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स।
2: ऑन इट टू स्विनर्स।
3: आम हालत हमारे इलाके में हल्की हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। पूर्व और ऊंचे इलाकों में हल्की बारिश होगी लेकिन दिन के दौरान मौसम साजगार रहेगा। आज रात आमतौर पर घने बादल होंगे, सेंट्रल प्लेटो पर हल्की वर्षा होगी। हवा पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगूनों के उस पार समुंदर खराब रहेगा, 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी दक्षिण और पश्चिम वाले लगूनों में, इसी वजह से दूर समुंदर में ना जाने की दरखास्त है। तापमान सेंट्रल प्लेटू में न्यूनतम तापमान 14 से 17, अधिकतम 20 से 23, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 22, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय 6:46 पर, सूर्यास्त 5:42 पर।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
4: Fin de mois. Et si on faisait les choses autrement? Du 26

0: सौ बात की एक बात है हाँ सारी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड जैसे चाहे आप पहन सकते हो
1: Avant deux défis, de longs shifts. Commence par une bonne décision. Nescafé.
0: हम रोज बातें करते हैं कितने हजारों शब्दों का इस्तेमाल करते हैं आई मीन हम अपनी जुबान का इस्तेमाल करते हैं कैसे करते हैं इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस जुबान जो है सिर्फ अल्फाज बोने का जरिया नहीं होती बल्कि इंसान के संस्कार उसकी सोच और उसके दिल का आईना भी होती है मीठी जुबान वहां भी रिश्तों को जोड़ देती है जहां बड़ी से बड़ी ताकत हार मान जाती है दैट्स व्हाई बोलने से पहले अल्फाजों को तोल मोल लीजिए कहते हैं ना हजारों बार सोच कर बोलना चाहिए क्योंकि जुबान से निकले हुए शब्द ना सिर्फ दिल जीत सकते हैं बल्कि हमेशा के लिए किसी का दिल भी तोड़ सकते हैं सो हम क्या बोल रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं हजार बार सोच लीजिए फिर बोलें
1: Avant deux défis, de longs shifts. Commence par une bonne décision. Nescafé. Avant deux défis, de longs shifts. De premier pas qui capable sens tous audi et n'a toujours une pause, un souffle, un moment. Nescafé first. Après tout fait une différence. Il peint sa tasse, lit un nouveau départ, un nouveau énergie, une nouvelle vision. Peu importe ta mission, peu importe ta question, commence par une bonne décision. Nescafé.

0: A good beat for your morning show.
1: RM2 Radio Musti.
2: देखो आजू बाजू जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप मिलना ही चाहते हैं देन एक छोटा सा मैसेज ही भेज दो ना on 5499129 4826. I know ये जो टाइम होता है पीक टाइम होता है एंड काफी लोग परेशान हो जाते हैं, ट्रैफिक जाम में फंसे होंगे, रोज का ये होता है. तो आप रोज थोड़ा यानी कि जैसे कहते हैं पहले ही आप निकल जाओ घर से, लाइक 20-30 मिनट्स ही आगे आप निकल जाओ तो एटलीस्ट आराम से आप अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करती हैं. दीदी आ गई, मुझे लगा दीदी मंजुलिका के पास गई है, अभी तक नेल पॉलिश लगा रही है. दीदी घुड़ के देख रही है. नो दीदी, तो दीदी भी आ रही है. चलिए देखते हैं आज मंजुलिका की क्या कहानी है, क्योंकि हमेशा कहती है मंजुलिका अभी तक नेल पॉलिश लगा रही है क्योंकि इसके पैर उल्टे हैं. दीदी गुड मॉर्निंग.
3: मंजुलिका ने मेरी पॉलिश लगा ली है.
2: लगा ली है? ओह माय गॉड, एक हफ्ता लिया?
3: हाँ, मैं उसको मैंने स्त्री से मिला दिया
2: तो स्त्री से
3: हाँ दोनों के पैर उल्टे थे
2: यानी कि
3: उसका लगा दिया
2: कि अब फंस जाते. गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग वेदिता. सो चलिए चलिए हम बात करें अबाउट मूवीज. आज है 3rd of July और अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अल्फा मूवी ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है एंड देयर इज अनदर मूवी नागा बंधम द सीक्रेट ऑफ ट्रेजर. एक फैंटेसी एडवेंचर थ्रिलर है जिसमें विराट कर्णा, नाभा नातेश यानी कि साउथ की मूवी है एंड 31st July तक काफी मूवीज में देख रू. धमाल 4 इज ऑल सेट टू बी रिलीज ऑन द 10th. साथ में इक्का नेटफ्लिक्स पर ये मूवी रिलीज होगी 10 को एंड सनी देओल, अक्षय खन्ना, सनी देओल इज बैक. इस बार क्या कमाल करने वाले हैं ये हम जरूर देखेंगे. 17th को रहूं मैं तेरे रूबरू. ओके, काफी मिस्ट्री मूवीज बनाई जा रही हैं. साथ ही साथ 24th को द इंडियन स्टोरी, एक सोशियो पॉलिटिकल ड्रामा है इंस्पायर्ड बाय कंटेंपरेरी इवेंट्स. साथ में 24th को तेरा यार हूं मैं, हम भी तो हैं आपके यार आपके अपने, रोमांटिक एंटरटेनर है और इसमें इंदिरा कुमार जो डायरेक्टर है उनके बेटे का डेब्यू होने वाला है. एंड ऑन द 31st इट्स गोना बी साइड हीरोज कॉमेडी ड्रामा. सो मच अवेटेड मूवीज, बातें तो होती रहेंगी और इन मूवीज के बारे में हम आपको बताते चलेंगे. लेकिन डू नॉट फॉरगेट योर मैसेजेस ऑन 5499 1294.

अदरक भूल गए। बिना अदरक की चटनी स्वादिष्ट नहीं होती है। हाँ थोड़ी सी आप चाशनी भी ला सकते हैं, कुछ लोग डालते हैं। हाँ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चीनी, हाँ चीनी इज़ वेरी हेल्दी, नो नो नो नॉट एट ऑल। आप चीनी कम कीजिएगा एंड आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं विद हनी वगैरह। सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, और जितना आप हेल्दी खाओगे उतना ही आपके जो जीवन है, आपकी जो जिंदगी है वो सवर जाएगी।

0: It's the World Cup magazine on RM2 with Mighty.
1: Get ready for the biggest World Cup ever!
2: 2026 FIFA World Cup.
1: रेडियो मास्टर की टीम के साथ
2: चलिए
1: यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको।
3: पोर्चुगल की जीत हो गई है, व्हाट अ पेनाल्टी गोल ऑफकोर्स किसकी तरफ से, वेल रोनाल्डो एंड उसकी जीत हो गई है। पोर्चुगल 2 क्रोएशिया 1 एंड स्विट्जरलैंड की भी जीत हो गई है। व्हाट्स मोर स्पेशल, अ वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन आपको अरविंद।
4: World Cup special, अभी it's great going, sweet going Switzerland के लिए, जो एक घंटे बाद मैच में अभी लगभग 30 मिनट्स हैं, तो 2-0 से Switzerland आगे हैं against Algeria। कल स्पेन और पोर्टुगल क्वालिफाई हुए World Cup के लास्ट 16 के लिए। ऑस्ट्रिया को हराने में पेन नहीं था स्पेन के लिए, बस 3-0, और इसमें 16 साल बाद स्पेन की टीम बेस्ट ऑफ 16 में पहुंची है। मिकेल ओयाजाबाल 2 गोल स्कोर कर पाया अभी तक इस वर्ल्ड कप में, वो 4 गोल स्कोर कर चुका है, एक गोल पेड्रो पोरो का रहा। और उल्लेखनीय बात है कि अभी तक स्पेन पर एक भी गोल नहीं बना है, डिफेंस अटूट है। और लास्ट 16 में स्पेन का सामना पोर्टुगल से होगा। पोर्टुगल ने 2-1 से हराया क्रोएशिया को। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पेनाल्टी पर एक गोल स्कोर किया, पहला गोल क्रोएशिया का रहा, पेरिसिच का, फिर इंजुरी टाइम में रामोस का गोल। वाव ड्रामा भी रहा इस मैच में, क्रोएशिया के लिए वाजोल का गोल इनकार किया गया ऑफसाइड के लिए। और अभी तो मैंने कहा स्विट्जरलैंड 2-0 से आगे हैं अगेंस्ट अल्जीरिया। फिर रात के 10 बजे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इजिप्ट, और कल

0: दो बजे अर्जेंटीना वर्सेस के वर्दे, साढ़े पांच बजे 5:30 कोलंबिया वर्सेस गाना, और कल रात लास्ट 16 शुरू हो जाएंगे। सो इस वीकेंड लास्ट 16 के मैच कल 9 बजे कनाडा वर्सेस मोरक्को, फिर रात को पाराग्वे वर्सेस फ्रांस, ये 1 बजे होगा। संडे की रात मिडनाइट मैच ब्राजील वर्सेस नॉर्वे, बाकी लास्ट 16 फिक्स्चर्स मेक्सिको वर्सेस इंग्लैंड ये मंडे मॉर्निंग 4 बजे, पोर्टुगल स्पेन मंडे नाइट 11 बजे, यूएसए बेल्जियम क्वार्टर फाइनल्स गुरुवार को जारी रखे जाएंगे। पोर्टुगल की जीत के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उसके साथियों ने जोगो जोता को याद करते हुए उसका टी शर्ट पहना, उसको श्रद्धांजलि दी। एक साल हो गए जब से जोता रोड एक्सीडेंट में मारा गया था, उसके साथ ही उसे भूले नहीं, जोता होता तो वर्ल्ड कप में जरूर होता। पोर्टुगल के मैनेजर ने कहा हम जोता के लिए ये वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं। और ये खबर मेक्सिको के खिलाफ मैच से पहले इंग्लैंड की टीम खास प्रिकॉशंस खास प्रबंध कर रही है। मेक्सिको के फैंस रात को शोर मचाकर मेक्सिको के खिलाफ खेलने वाली टीम के खिलाड़ियों को सोने नहीं देते। इक्वाडो के खिलाड़ियों ने शिकायत की थी टीम होटल के बाहर लाउडस्पीकर होन मोटरसाइकिल से खिलाड़ियों को परेशान करते हैं, इसलिए इंग्लैंड की टीम अपने लोकेशन को गुप्त सीक्रेट रखना चाहती है और जरूरत पड़ने पर नींद की गोलियां स्लीपिंग पिल्स भी लेंगी इंग्लैंड के खिलाड़ी और उसके स्टाफ। फुटबॉल में जीतने के लिए कभी ऐसा भी करना होता है। सो दिस वाज द लेटेस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड कप।
1: थैंक यू अरविंद।
2: It was the World Cup magazine on RM2 with Mighty.
3: FIFA World Cup 2026, 11 June se 19 July. Catch all the news, views, previews and latest updates.

0: Oh God, one more remix.
1: A good beat for your morning show.
2: RM2, Radio Musti in the mix.
3: विश यू अ वेरी गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर सुदेवी जी वाकवा से कहते हैं कि आज छोटे वीर अपना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो ऑस्ट्रेलिया से है मामा वर्षा, पापा विमल, दिनी या पूरे परिवार की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार। वेलकमिंग यू मिस्टर कमलदीप एंड आपके पूरे परिवार। डेडिकेशन गुजार टू मिसिस तारामती दिगम, आपको भी हैप्पी बर्थडे। आप रहते हैं पावे गोत रिविया चौंपा, सब परिवार की तरफ से ढेर सारा प्यार।

0: ऐसा लग रहा है जंगल में मंगल.
1: मॉर्निंग बीट. ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स. A good beat for your morning show.
2: RM2, Radio Musti in the mix.
0: बोला अभी ना जंगल में मंगल, तो चले अभी इट्स टाइम टू खिसको नहीं दू क्योंकि आ गए है विको नहीं विकास आपकी मॉर्निंग को एकदम मस्त बनाने के लिए. सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स, हैव अ नाइस वीकेंड अहेड, कैच यू ऑन मंडे मॉर्निंग. बाय बाय.

0: आए मिलते हैं सुमेरा से, सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। नमस्कार आदाब सुमेरा।
1: नमस्कार आदाब वेदिता, सभी को मेरा नमस्कार और आदाब। साल 2026 की पहली तिमाही में मॉरिशस का घाटा बेहतर हुआ है, वो 1.1 बिलियन रुपए तक आ गया, यानी मूल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 0.6%। पिछले साल की इसी अवधि के दौरान घाटा 6.2 मिलियन रुपए था और ये घाटा जीडीपी में 3.7% का प्रतिनिधित्व करता था। स्पष्ट रूप से देश में आने वाले पैसों के मुकाबले कम पैसे बाहर गए। ये हालत पर्यटन और सेवाओं की बदौलत बेहतर हुई है, लेकिन मॉरिशस अपने निर्यात से ज्यादा पैदावारों का आयात करता जा रहा है। राष्ट्रीय बजट में पेंशन सुधार के सिलसिले में बहसें जारी हैं। श्रमिक संघ का दबाव है और वो सरकार के साथ बातचीत करने की मांग कर रहा है। कल सिकोम एम्प्लॉयज यूनियन प्रेस से मुखातिब हुआ प्रवक्ता दीपक बेनीदीन ने बजट में ऐलान किए गए कदमों को लेकर अपनी नारजामंदी दोहराई है। उनका कहना है कि सुधार यूनिवर्सल पेंशन का आदर्श है और इस पर सवाल उठ रहा है और इससे भविष्य के रिटायर्ड लोगों को बहुत नुकसान होगा। श्रमिक संघ बदलाव की मांग कर रहा है और सामाजिक साझेदारों के साथ सलाह मशवरा करने की दरखास्त भी कर रहा है। दूसरी खबरों में वाकवा में टाकामा का पुल अब फिर से कार्यरत होने लगा है। ये पुल 60 से ज्यादा साल पुराना है, जिस पर दो बसें एक ही वक्त पर नहीं गुजर पाती थीं। कई महीनों के कार्यों के बाद कल सुबह पुल का फिर से उद्घाटन किया गया। बजट 2026-2027 के जरिए मॉरिशस अपने सार्वजनिक फाइनेंस को बेहतर कर सकेगा। मॉरिशस के लिए BAA फ्री का नोट बरकरार रखते हुए मूडीज के जायजे का ये नतीजा है। अगरचे इस एजेंसी ने घाटे को कम करने और कर्ज को स्थिर बनाने में सरकार की कोशिशों की सराहना की है, उसका मानना है कि इस राह में कई खतरे पैदा हो सकते हैं, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ के मद्देनजर। विदेश में थाईलैंड के उत्तर पूर्व में एक सड़क हादसा हुआ, 9 बुद्धिस्ट मॉन्क्स की मौत हुई है। एक 11 साल का लड़का गाड़ी चला रहा था, उसने अपने माँ बाप की इजाजत के बगैर ट्रक लिया। और जापान की प्रधानमंत्री 16वें जापान भारत शिखर वार्ता में हिस्सा लेने के लिए भारत के औपचारिक दौरे पर गई हुई हैं। कल 16 समझौतों पर दस्तखत किए गए। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री सानाए ताकेची के बीच एक उच्च स्तरीय मुलाकात हुई और रणनीतिक, टेक्नोलॉजिकल और आर्थिक रिश्तों को मजबूत करते हुए सप्लाई चेन, आधुनिकीकरण, नवीनीकरण और अनुसंधान पर जोर दिया गया। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार आदाब।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: अरे ऐसे मौसम के अंदर चाय कॉफी की बात करते हो, वो भी गर्मा गर्म, साथ दोगे तो पी लेंगे हम।
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
0: स्वागत है आप सभी का, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज की तारीख 3rd of July फ्राइडे के दिन, ओह थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे। काफी लोग हैं जो कि प्लान बनाकर बिल्कुल रेडी और सेट हैं, और चाहे वर्ल्ड कप की बात हो या फिर दोस्तों का साथ हो, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग द गुड बॉन्ड। आज का दिन लेकर आए नए मौके, नए पॉजिटिव वाइब्स, और जो काम दिल से करेंगे उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलने के योग हैं ही। परिश्रम करते रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, रिश्तों में प्यार, अंडरस्टैंडिंग। भाई मेहनत करते रहोगे तो स्माइल के साथ साथ नई मंजिलों को गले लगा पाओगे, गानों के साथ गुनगुना पाओगे। Let's make some music.

कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: वैसे सुबह से बात हो रही कि कौन सी मूवीज रिलीज होने वाली है और साथ साथ में मैं तो चाहता हूँ कि हमारी टेंशन यूं ही रिलीज होती रहे. जिंदगी के अंदर थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शंस भाई जरूरी है, नहीं तो फिर लगेगा हर दिन वही दिन, मंडे हो या फ्राइडे. लेकिन फ्राइडे के दिन आते ही कुछ स्पेशल फीलिंग तो जरूर आती है. नहीं, प्लानिंग के साथ साथ ये भी सोच लीजिए कि वीकेंड में आपको करना क्या है. अपने ऊपर काम कीजिए, थोड़ा सा मी टाइम, थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश कीजिए और सेट हो जाइए बाकी के दिन के लिए, बाकी के आने वाले दिनों के लिए. थर्ड ऑफ जुलाई, चलिए बात करेंगे इस दिन की, इस तारीख की, आपकी राशियों की. इट्स ऑल कमिंग इन सम टाइम.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: जी आज का दिन रोशनी लेकर आएगा, खुशियां लेकर आएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और मेहनत की तारीफ भी हो सकती है. लेडी लक ऑन योर साइड और शुरुआत करते हैं वे.
2: एरीज मेष राशि.
1: नमस्कार एरीज, आज एनर्जी फुल ऑन रहेगी और नई अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रही हैं. कॉन्फिडेंस के साथ लिया गया हर स्टेप फायदेमंद साबित हो सकता है. अपनों के साथ खुशियां भरती रहेंगी, बड़ी होती जाएंगी और स्माइल बनाए के रखिए. आज पॉजिटिविटी आपका लकी चार्म बना रहेगा.
2: टॉरस वृषभ राशि.
1: Hey, Taurus, आज patience और practical सोच आपको हर situation में edge देगी. एक X factor, छोटी छोटी achievements भी दिल को खुश कर देंगी. Family और friends का support आपको motivate करेगा. दिन को gratitude के साथ enjoy कीजिए.
2: Gemini, मिथुन राशि.
1: Gemini, लगता है कि आज communication आपकी सबसे बड़ी strength रहेगी. नए ideas और interesting conversation से दिन exciting बनेगा. हर मौका confidence के साथ grab कीजिए. Good vibes आज आपके साथ चलने वाले हैं.
2: कैंसर कर्क राशि.
1: नमस्कार कैंसर, आज इमोशंस और इंट्यूशन दोनों आपके फेवर में रहने वाले हैं. घर का अपनों का साथ, सुकून भरे पल आपको मिल सकते हैं. किसी अच्छी खबर से चेहरे पर मुस्कान आ सकती है और पॉजिटिव सोच के साथ दिन को एंजॉय करने के लिए बिल्कुल रेडी रेडी स्टेडी लेट्स गो.
2: लियो सिंह राशि.
1: लियो, समय रहते काम करती हो. वैसे आज आपकी जो पर्सनालिटी है हर जगह शाइन करेगी. लीडरशिप और कॉन्फिडेंस से नए डोर्स ओपन हो सकते हैं. अप्रिसिएशन मिलने के योग बन नजर आ रहे हैं और आज दिल खोलकर आप अपनी चमक दिखा सकते हैं. आप में कितना टैलेंट, कितनी कैपेसिटी, कितनी कैपेबिलिटी.
2: वर्गो कन्या राशि.
1: वर्गो, आज प्लानिंग और स्मार्ट डिसीजंस आपको सक्सेस की तरफ ले जाएंगे. काम स्मूथली कंप्लीट होंगे और सैटिस्फैक्शन मिलेगा. छोटी खुशियां भी आज स्पेशल फील कराएंगी. पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखिए, यही है आपके बढ़ने का पूरा पूरा एक्स फैक्टर.
2: लिब्रा तुला राशि.
1: नमस्कार लिब्रा, आज बैलेंस और हार्मनी आपके दिन को खूबसूरत बनाएंगे. रिलेशनशिप्स में वार्मथ और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. क्रिएटिव आइडियाज भी अप्रिसिएशन ला सकते हैं. बस हर पल को स्माइल के साथ जीना होगा.
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि.
1: स्कॉर्पियोज, आज डिटर्मिनेशन आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी. जो सोचा है उसकी तरफ स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है. वहीं पर किसी अपने से इंस्पायरिंग बातें हो सकती हैं. कॉन्फिडेंस आज आपकी सुपर पावर बनेगी.
2: सजिटेरियस धनुराशि.
1: सजिटेरियस, आज एडवेंचर और एक्साइटमेंट से भरा दिन हो सकता है. नए एक्सपीरियंसेस आपको खुशी और मोटिवेशन देंगे. हर चैलेंज को पॉजिटिव स्पिरिट के साथ एक्सेप्ट कीजिए और लक आपके साथ मुस्कुराने के लिए बिल्कुल तैयार.
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि.
1: आज मेहनत का अच्छा रिजल्ट मिलने के योग है. कैप्रिकॉर्न्स, फोकस और डिसिप्लिन आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे. किसी से मिलने वाली जो तारीफ होती है वो आपको बिल्कुल रेडी रखकर बिल्कुल सेट कर देगी फॉर द होल डे. पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ाइए इस दिन को, आप देखेंगे कमाल. एक्वेरियस, आज क्रिएटिव आइडियाज और फ्रेश थिंकिंग आपको अलग पहचान दिलाएगी. फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा. नए प्लान्स एक्साइटमेंट लेकर आ सकते हैं. आज अपनी यूनिकनेस को सेलिब्रेट कीजिए.
2: पाइसेस मीन राशि.
1: हे पाइसेस, आज इमेजिनेशन और पॉजिटिविटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहने वाला है. दिल की बात सुनेंगे तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं. अपनों के साथ खुशनुमा पल दिन को यादगार बनाएगा. आज हर लम्हा ऑप्टिमिज्म के साथ एंजॉय कीजिए. जैसे RM2 पर बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक.
0: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती.

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: नमस्कार, 34 मिनट एंड 3rd ऑफ जुलाई. लीजा बेला, हफ्ता भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है जुलाई का. हाँ, दिन थोड़े कम थे लेकिन कोई बात नहीं, बाकी तो अपनी प्लानिंग हो ही जाती है, चाहे दिन कितने भी लंबे कितने भी छोटे हो. हाँ, लेकिन ये सच है कि जिस तरह काम चलता है तो फिर लगता है कि कैसे टाइम निकल गया और कुछ किया भी नहीं. यानी कि वो अकड़न थोड़ी सी पीठ में या फिर कंधों में थोड़ी सी जकड़न. आज का लाइफ स्टाइल मंत्रा है वॉक वाइल यू टॉक. यानी कि जब आपको कोई फोन कॉल अटेंड करना हो या जरूरी ना हो कि आपको डेस्क पर ही बैठना है और अपने कंप्यूटर को देखना है या स्क्रीन को, तो कॉल के दौरान हल्का सा वॉक करके देखिए. कमाल है, सिर्फ 10-15 मिनट की वॉकिंग ना सिर्फ आपके स्टेप्स को बढ़ाती है बल्कि ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करती है और दिमाग को भी फ्रेश फील करवाती है. तो अगर इतनी इंपॉर्टेंट फोन कॉल नहीं है, दोस्तों से बात हो रही है, फैमिली से या कलीग्स या जिससे भी, और लगता है कि आपको स्क्रीन के सामने बैठना है, तो बस निकल पड़ी थोड़ी सी वॉक एंड टॉक. अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मूवमेंट के दौरान कई लोगों को नए आइडियाज और बेटर सॉल्यूशंस भी मिलते हैं. सच मानिए, इंस्पिरेशन मिलती है. इसलिए कई सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स ब्रेनस्टॉर्मिंग या फिर इंपॉर्टेंट डिस्कशंस के लिए वॉकिंग मीटिंग्स का ऑप्शन चूज करते हैं. अब जितने भी यहाँ पर मैनेजमेंट के लोग हैं सुन रहे हैं तो इसका फायदा उठा सकते हैं. चलिए आज थोड़ा वॉक टॉक करते हैं. Let's go walkies and talkies. हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग है ना. तो आज जब

0: फोन बजे सिर्फ कॉल मत उठाइए अपने कदम भी बढ़ाइए छोटी सी हैबिट लेकिन हेल्थ और प्रोडक्टिविटी दोनों के लिए एक बड़ा अपग्रेड
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती
3: अरे भैया हम बात करते हैं थोड़ा सा चलने का या तो चली चली
0: अरे एक पहल ही भली

0: एल्बम बाजी गुस्सा अलग ही है ना। वैसे 90s की बात करें या अर्ली 2000 की, तो ये सिलसिला चला ही हे हे भाई, साथ यूं ही देते रहे।
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
0: भाई क्या करें, कभी कभी इन भावनाओं में हम भी थोड़ी देर के लिए बह जाते हैं। वैसे कुमार सानू साहब के इतने सारे गाने, तो वो स्टाइल तो आ ही जाता है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। वैसे काफी लोग हैं जो अपने दिन की शुरुआत करते हैं सीधा कॉफी या चाय से, तो आज का मंत्र ये है कि हाइड्रेट बिफोर यू कैफिनेट। इसका मतलब क्या है भाई? ये है कि जब आप कॉफी या कुछ ऐसी क्रेविंग रखते हैं अपने अंदर, तो फिर आपको लगता है कि सीधा इसे शुरुआत करें। लेकिन अच्छी बात है कि उससे पहले आप एक बड़ा ग्लास पानी जरूर पीजिए। रात भर की नींद के बाद बॉडी नेचुरली डिहाइड्रेटेड हो जाती है, और पानी पीने से मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट हो जाती है, और उसके बाद बॉडी फील करती है ऑल फ्रेश। सो कई बार जो हमें थकान लगती है वो सिर्फ डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। होता ना कभी आज पता नहीं क्यों सर दर्द हो रहा है, अरे पानी नहीं पिया ना, सोचो कब पिया था लास्ट। अब ऐसे सर्दी का मौसम है और ऐसे में पानी पीना मन इसलिए नहीं करता क्योंकि यू आर नॉट स्वेटिंग, है ना, इसीलिए प्रॉब्लम। तो एक छोटा सा चेंज कीजिए, पहले पानी और फिर चाय और कॉफी। हेल्दी मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, म्यूजिकल मॉर्निंग।
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
4: Well, good morning, aap sabhi ko. Time check, 3rd of July, 10 a.m. Studio Bangi Sumera, milte unse jante is ghante ke sanchip samachar. Namaskar.
5: नमस्कार आदाब. बजट 2026-2027 के जरिए मुर्शिद अपने सार्वजनिक फाइनेंस को बेहतर कर सकेगा. मुर्शिद के लिए BAA फ्री का नोट बरकरार रखते हुए मूडीज के जायजे का ये नतीजा है. अगरचे इस एजेंसी ने घाटे को कम करने और कर्ज को स्थिर बनाने में सरकार की कोशिशों की सराहना की है, उसका मानना है कि इस राह में कई खतरे पैदा हो सकते हैं, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ के मद्देनजर. राष्ट्रीय बजट में पेंशन सुधार के सिलसिले में बहसें जारी हैं. श्रमिक संघ का दबाव है और वे सरकार के साथ बातचीत करने की मांग कर रहा है. कल सिकुम एम्प्लॉयज यूनियन प्रेस से मुखातिब हुआ प्रवक्ता दीपक बेनीडी ने बजट में ऐलान किए गए कदमों को लेकर अपनी नारजामंदी दोहराई.

0: उनका कहना है कि सुधार यूनिवर्सल पेंशन के आदर्श पर सवाल करता है और इससे भविष्य के रिटायर्ड लोगों को नुकसान होगा। श्रमिक संघ बदलाव की मांग कर रहा है और सामाजिक साझेदारों के साथ सलाह मशवरा करने की दरखास्त कर रहा है। अनुला जैस फिर से आरटीओ कंपनी के सीईओ के पद पर फायर्स हुए हैं। बुध को आईबीएल ग्रुप के सीईओ की औपचारिक नियुक्ति हुई। अनुला जैस को इस क्षेत्र में तजुर्बा है। अप्रैल 2018 से 2022 तक वो ये जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। ग्रुप की एक औपचारिक विज्ञप्ति में इस बात की जानकारी है कि जेरोम दे शातुनफ ने अवकाश लिया है। विदेश में जापान की प्रधानमंत्री 16वें जापान भारत शिखर वार्ता में हिस्सा लेने के लिए भारत के औपचारिक दौरे पर हैं। कल 16 समझौतों पर दस्तखत किए गए। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री सानाए ताकेइची के बीच एक उच्च स्तरीय मुलाकात हुई। रणनीतिक, टेक्नोलॉजिकल और आर्थिक रिश्तों को मजबूत करते हुए सप्लाई चेन नवीनीकरण और अनुसंधान पर जोर दिया गया। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। शिवाला रोड बेलरीव में 63 साल के 63 years old श्री गिरिजानन सिनंदन, श्री गिरिजानन सिनंदन जो सुनील के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थे आज ढाई बजे इनकी पत्नी बबीता सिनंदन के घर शिवाला रोड बेलरीव के वलनगर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बॉम्बू बेलरीव की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। क्षेत्र रोड ग्रांड रिट्रीट में 79 साल की 79 years old श्रीमती पुष्पावती भोला, श्रीमती पुष्पावती भोला जो पुष्पावती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई है। अर्थ है आज दिन के 12 बजे इनके पति अमीर चंद्र भोला के घर क्षेत्र रोड ग्रांड रिट्रीट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचिया की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नून। बोस्टम रोड लाफलोगा में 75 साल के 75 years old श्री रामदत्त राघडू जो कुमार के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थ है आज दो बजे इनके बेटे योविन राघडू के घर बोस्टम रोड लाफलोगा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गौबुआ की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: Right guys, मौसम तो ठीक ठाक निकला. वैसे ही होता है कि आप जब भी अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो पहले देखते हैं आज मौसम कैसा है. आप वहीं पर जहाँ पर थोड़ी सी बारिश हो रही हो, ज्यादा हवा चल रही हो, फिर लगता है कि आइयो बस अपना ऑन कर दो रेडियो. हालांकि साथ साथ में वो मूड और मौसम का डायरेक्ट कनेक्शन है. जब हो सनशाइन और चल रहा हो आर एम टू पर बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक तो फिर दिन एकदम बिंदास. नमस्कार, मैं हूँ विकास और चलता रहूंगा 12 बजे तक. आज का मंत्र 10 मिनट्स ऑफ सनशाइन. वैसे रोज अगर आप 10 मिनट की मॉर्निंग सनलाइट लेते हैं तो वो आपके मूड को नेचुरली बूस्ट कर सकता है. जहाँ विटामिन डी के बारे में तो है ही है, आपको पता, लेकिन विटामिन सी ये है कि सी, अरे सी, व्हाट डिफरेंस इट मेक. ये बॉडी क्लॉक को ना रीसेट करती देती है. उसके बाद आपकी जो एनर्जी है वो सही डायरेक्शन में फ्लो करने लगती है. उसके बाद रात को नींद बेहतर आ सकती है. तो इतने सारे फायदे, बस बदल लो जिंदगी के अंदर थोड़े थोड़े कायदे तो पॉसिबल हो अपनी मॉर्निंग जो चाय है वो गर्म पानी पीने के बाद, याद है ना. तो वही बालकनी या गार्डन में एंजॉय कीजिए, लेकिन नेचर के साथ शुरू कीजिए. हर दिन एक नया स्टेप टावर्ड्स अ न्यू मंजिल. उसके बाद देखिए जिंदगी भी चमकेगी झिलमिल.
0: वेलकम टू आर एम टू
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती.

0: 2
1: Radio Musti.
0: Fashion tips powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments. Welcome to RM2.
1: Musti Mornings, Radio Musti.
2: अच्छी बात तो है कि आप जब सोचते हैं कि आपको कहीं जाना है तो यू नीड टू बी राइटली ड्रेस फॉर द राइट ओकेजन, ये ज़रूरी है ना। वैसे आप शादी में जा रहे हैं या फिर घर से बाहर निकल कर, ऐसे कैजुअल विजिट या फिर आप काम पर जा रहे हैं, सब कुछ अलग। तो आज की फैशन यही है टिप कि राइट आउटफिट फॉर द राइट ओकेजन। स्टाइलिश दिखना सिर्फ ट्रेंडी कपड़े पहनना नहीं होता, बल्कि मौके के हिसाब से ड्रेसिंग चूज करना भी फैशन का एक इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए, ऑफिस के लिए स्मार्ट कंफर्टेबल, आउटिंग के लिए रिलैक्स, और फेस्टिव इवेंट्स के लिए थोड़ा ग्लैमरस, थोड़ा कॉस्ट्यूम और थोड़ी सी छोटी सी मीमी लगाकर या फिर अपना जो फेवरेट आपने टाई लगा लिया उसके लिए तैयार हो गए तो कॉन्फिडेंस अपनी आप ही बढ़ जाता है और फैशन तभी कंप्लीट होता है जब कंफर्ट और कॉन्फिडेंस साथ हो। तो बस आज की बात करें तो यू कैन गो मोनोक्रोम, यानी कि जितने भी कलर्स हैं वो एक फैमिली में तो आते ही हैं, अलग कभी डार्क कभी लाइट, लेकिन ये कभी आउट ऑफ फैशन नहीं गया, सिंपल भी है स्टाइलिश भी। जब ऐसे कहते हैं ना कि ऑल ब्लैक या फिर ऑल वाइट, बेज टोन्स के साथ या डिफरेंट शेड्स, अलग अलग स्टाइल, अगर आपको लगता है, अगर आप कंफर्टेबल हैं और कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं तो इसके बीच में आप थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं। यानी कि एक लाइट आपने शर्ट पहन लिया, उसके ऊपर एक कोट डाला जो थोड़ा सा डार्क है बट ऑन द सेम शेड, और साथ में एक मफलर, देखिए साहब कमाल कर देगा आपका एक कलर।
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हल्कोरि फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स। RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रही है, अब इसकी जरूरत नहीं। हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगा, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
1: Uniquement chez King Savers, du 25 juin au 13 juillet, les 100 grammes ailes de poulet panées sont à 28,80 €. Les 100 grammes popcorn de poulet sont à 39,80 €.
2: RM2 Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: Alrighty, हम कहते हैं ना कि मेहनत और परिश्रम का फल मिलता है, लेकिन जो फल आपकी प्लेट में मिलता है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जरूरी ये कहते हैं कि इंद्रधनुष को खा लो. अरे ये क्या है? अरे साहब, ऐसा कि आपको रेनबो एक्चुअली खाना नहीं है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट कलर्स. देखिए साहब, ऐसा था कि मॉर्निंग में आप भागा दौड़ी जरूर करते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम निकालते हैं, यानी कि थोड़ा जल्दी उठते हैं, तो फिर इन फ्रूट्स को काट के अपने में बांट के एक हेल्दी शुरुआत कर सकते हैं. यानी कि हर कलर का एक रंग का एक फ्रूट, फिर चाहे वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हों. कोशिश कीजिए कि एक प्लेट वन प्लेट टू हो. मॉर्निंग के अंदर ब्रेकफास्ट के पहले आप फ्रूट्स खाइए और लंच से पहले सलाद. देखिए शरीर कितना बन जाएगा फौलाद. सच बात है. वैसे कहते हैं कि हर कलर अपने साथ अलग अलग न्यूट्रिएंट्स एंटीऑक्सीडेंट्स लेकर आता है, जो बॉडी को नेचुरली सपोर्ट करते हैं. सो आज से ये फैसला कर लो कि नया महीना नहीं, ये नई शुरुआत होगी. ये ठीक है ना? इज इट द राइट वे?

0: राशि अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट्स के साथ संक्षिप्त समाचार के साथ स्टूडियो में आ गई हैं सुमेरा, उनसे मिलते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार। रौदाब एमरश्रस के चंद उच्च अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, उनमें लोरेंट रुकुरा का नाम है जो कंपनी के चीफ कमर्शियल ऑफिसर है। अभी हमारी जानकारियों के मुताबिक उन्हें दूसरी बार के लिए सस्पेंड किया गया। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के महानिदेशक दाऊद आरी ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि क्रोल रिपोर्ट से अंजाम होंगे। अनुला जस फिर से आरटीओ कंपनी के सीईओ के पद पर फायर्स हुए हैं। बुध को आईबीएल ग्रुप के सीईओ की औपचारिक नियुक्ति हुई। अनुला जस को इस क्षेत्र में तजुर्बा है। अप्रैल 2018 से 2022 तक वो ये जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। ग्रुप की औपचारिक विज्ञप्ति में इस बात की जानकारी है कि जेरोम दुशातोनफ ने अवकाश लिया है। आज से यानी कल से तकामाका पुल फिर से कार्यरत होने लगा है। गाड़ियों की आवाजाही सुचारू रूप से की जा रही है। ये पुल 60 से ज़्यादा साल पुराना है, जिस पर दो बसें एक ही वक्त पर नहीं गुजर पा रही थीं और इससे पुनर्निर्माण कार्यों की ज़रूरत थी। कई महीनों के कार्यों के बाद इस पुल का दोबारा उद्घाटन किया गया है।

विदेश में कीव में रूसी ताकतों ने ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं और कम से कम 30 लोगों की मौत हुई है। शहर के मेयर ने कहा कि ये सबसे गंभीर हमला है और आपको ये भी बता दें कि 91 लोग जख्मी हुए हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार और आदाब।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Yes, music to surround you, music to be around you. ये तो हमेशा होता है RM2 पर 24/7 music. सोचिए अगर music नहीं होता, नेचर से कितने इन्फ्लुएंस होते हैं ना हम, हर दिन कुछ अलग, जैसे चिड़ियों की चहचहट, किसी आने की आहट, या फिर हम सोचें कि कपड़े धोने में, बच्चे के रोने में, हर जगह तो म्यूजिक ही है। अभी हमने म्यूजिक डे सेलिब्रेट किया उसी ताजगी के साथ, और वैसे हर दिन हमारी शुरुआत भी म्यूजिक के साथ ही होती है, इसकी जरूरत इतनी होती है। सो जितने भी आप हमारे लिसनर्स कहीं से भी साथ दे रहे हैं, बिग हेलो टू यू। चलिए थोड़ी देर में कुछ आपके मैसेज पढ़ते हैं, वक्त हो जाएगा जहां पर इंटरनेशनल लिसनर्स जो जानना चाहते हैं कि मुर्शिद में हालचाल कैसे हैं, सब कुछ बताएंगे, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी लेकर आएंगे।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Chalo aap good messages on 5491294 again. Namaste ji, please mera naam add kar dijiye. Main hu Bidesi. All right, aaj unka birthday. So happy birthday from the whole team. Bas aur details bhejte to maza aata. Anyways, Radio Musty ki team ki taraf se kehta hai lagana to Abdul and Sara Banu. Have a nice day aapko bhi. गायत्री जी क्या हाल चाल कहते हैं बस मज़ा आ रहा है मॉर्निंग में खाने कुछ अलग ही चल रहे हैं तो मज़ा आता है जब कुछ चेंज होता है हाँ कभी अर्ली 2000 और कभी कुछ पुराने गानों वाली फील वैसे आपको याद रहा दूँ कि 12 से 2 के बीच में तो ऐसे गाने चलते ही हैं वैसे कहते हैं कि मैं बहुत डांस कर रही हूँ कुछ गानों के साथ अरे क्या बात है ज्योति शानू बनारस से हमारा भी आपका साथ मिल गया तो ये भी है कमाल की बात इंटरनेट के जरिए MBC प्ले के जरिए वैसे मैचेस देख रहे हैं ना आज भी कुछ कमाल के मैचेस होंगे चलिए इसके हम बात करते हैं थोड़ी देर में स्टे ट्यून्ड
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: जिंदगी का चैप्टर बहुत कमाल का है. इसमें वो लिखा होता है जो पहले कभी हुआ नहीं. हर दिन कुछ नया, कुछ अलग, एक नया चैलेंज, एक नई सिचुएशन, एक नई परिस्थिति. हाँ, लेकिन स्माइल करना ना भूलें. स्टार्ट विद अ स्माइल. चाहे दिन कितना भी बिजी हो, सुबह खुद को मिरर में देखकर एक जेन्युइन स्माइल देना बहुत जरूरी है. अरे साहब, और कुछ नहीं, एक्सप्रेशन नहीं बल्कि अपने दिन की एक पॉजिटिव शुरुआत करने का एक सिंपल सा तरीका है. और सच मानिए, जब आप स्माइल करते हैं यानी कि आपने अपने आप को कंडीशन कर लिया, तैयार कर लिया एक अच्छा दिन बिताने के लिए. ये स्माइल कंटेजियस हो सकती है. और जो अच्छी चीज़ें, यू नो ना, गुड थिंग्स आर फॉर शेयरिंग. हाँ, तो बस दूसरों के साथ शेयर कीजिए, स्माइल कीजिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए. और वो जो लोग काम करते हैं ना ऐसे, जो अपने दिन की शुरुआत ऐसे पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, तो उनका दिन अच्छा ही जाता है, क्योंकि वो रेडी हैं हर एक लम्हे को बेहतर बनाने के लिए, स्पेशल बनाने के लिए, और साथ साथ में पॉजिटिविटी फैलाने के लिए.
3: कभी स्पाइसी, कभी स्वीट, म्यूजिक लवर्स की हार्ट बीट.
4: टक टक बॉलीवुड.

0: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं। हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगा, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
1: Allons chez Loulou. Chez Loulou, Mojo, Peach Halves, 820 grammes à 49,50 €. Omega, lait entier en poudre de 1 kg à 199,50 € et recevez un jus La Vie 200 ml en cadeau. Lavage Kiri, 32 portions à 122,50 €.
2: Loulou Hypermarché.

0: RM2 Radio Musti.
1: चल मुंह तो सेट हो गया और वहीं पर एक लड़की है जो बिल्कुल सेट होकर आपके साथ आ गई है. ओ माय गॉड क्या निकल रहे हैं उसके एनर्जी के बबल्स. गाने सुनेंगे उड़ जाएंगी सारी ट्रबल्स. यस या एवरग्रीन क्लासिक गोल्डन हेयर साथ में 90s का तड़का. अब जा रहा है लड़का क्योंकि लड़की आने वाली है. नीलमणि विद यू इन रेट्रो रिदम.

0: चलेबी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे सुमेरा नमस्कार।
1: नमस्कार। आदाब। शुगर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की पुरानी सीईओ निष्ठा ज्योति नीद्रू ने ऐलान किया कि आज वो अपने वकील से मिलने वाली हैं और सोमवार से ही वो अदालती कार्रवाई शुरू करेंगी। उन्होंने कहा कि एक खत के जरिए उन्हें इस हफ्ते के दौरान पद से निकाले जाने की खबर मिली। उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर टिप्पणी की है और कहा कि इस वीडियो को मैनिपुलेट किया गया है। एमर्शस के चंद उच्च अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। उनमें लोरों रुकुरा का नाम है जो कंपनी के चीफ कमर्शियल ऑफिसर हैं। अभी हमारी जानकारियों के मुताबिक उन्हें दूसरी बार के लिए सस्पेंड किया गया। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के महानिदेशक दाउदागी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि क्रोल रिपोर्ट से अंजाम होंगे। अनोला जैसे फिर से आरटीओ कंपनी के सीईओ के पद पर फायज हुए हैं। बुध को आईबीएल ग्रुप के सीईओ की औपचारिक नियुक्ति हुई। अनोला जैसे को इस क्षेत्र में तजुर्बा है। अप्रैल 2018 से 2022 तक वो ये जिम्मेदारी

0: संभाल चुके ग्रुप की एक औपचारिक विज्ञप्ति में इस बात की जानकारी है कि जेरोम दुशातोनव ने अवकाश ले लिया है। विदेश में इस वीकेंड के दौरान 15 से 20 मिलियन लोग तेहरान की गलियों में होंगे। वे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमानी को श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले हैं, जिनको 9 जुलाई को दफनाया जाएगा। आपको बता दें कि करीब 30 देशों के जिम्मेदार इसमें भाग लेने वाले हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। कैथो बोल रोड बोनाकोई में 76 साल की 76 years old श्रीमती नर्मदा जयमंगल, श्रीमती नर्मदा जयमंगल जो नर्मदा के नाम से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दो बजे इनकी बहन इंदिरा बाबूलाल के घर कैथोबो रोड बोनाकोई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। कश्मीर रोड लेस्पेरेंस त्रिबुशे में 68 साल की 68 years old श्रीमती सीता महादेव बैरब, श्रीमती सीता महादेव बैरब पैदाइशी नाम अलकोरी जो विद्या के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल तीन बजे इनके घर कश्मीर रोड लेस्पेरेंस त्रिबुशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 3 PM। नागिया रोड बागामिया रोजबेल में 68 साल के 68 years old श्री भूपेंद्र नाथ पमिसा, श्री भूपेंद्र नाथ पमिसा जो भूपेन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज तीन बजे इनके बेटे अग्निश पमिसा के घर नागिया रोड बागामिया रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए माखीजानी रोजबेल की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। कोकोलेन लिस्काली में 70 साल के 70 years old श्री सत्तू सिनिवासन जो बायन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल साढ़े ग्यारह बजे इनके घर कोकोलेन लिस्काली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए माखीजानी रोजबेल की शमशान भूमि दी जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Retro Rhythm. RM2, Radio Musty.

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti. Radio Musti.
0: Retro Rhythm.
2: हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते, यही ख्वाहिश है आपके लिए। नमस्ते, गुड आफ्टरनून, इट्स नीलमणि, और 2 बजे तक लेकर आएंगे आपके लिए बॉलीवुड के वो टाइमलेस हिट्स जो आज भी दिल के किसी कोने में जिंदा है। तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं, बैक टू अ ब्यूटीफुल सॉन्ग आपको फिर से उन अच्छे मेमोरीज को याद कराने के लिए। हैपनिंग ओनली ऑन यू आर एम टू रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम।
1: सांसों से नहीं, क्या बात, क्या गाना है। कुछ गाने कभी पुराने नहीं होते हैं, सिर्फ और भी खूबसूरत लगने लगते हैं टाइम के साथ, चाहे वो पहला प्यार हो या फिर वो आखिरी मुलाकात। रेट्रो मेलोडीज हर इमोशन को परफेक्टली बयां करती है, तो चलिए सुनते हैं एक ऐसा ही दिल को छू लेने वाला गीत, इस बार येसुदास जी की आवाज में, तो हो जाए आप सभी सुनने वालों के नाम।

0: Retro Rhythm.
1: बारह बजकर 35 मिनट हुए हैं और आप कनेक्टेड हैं रेट्रो रिदम के साथ। एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करूं आपसे, 70s से 90s तक बॉलीवुड म्यूजिक में मेलोडी मीनिंगफुल शब्दों का और लेजेंडरी वॉइसेस का एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जिसने हर जनरेशन को अपना फैन बना दिया। इसलिए आज भी किशोर कुमार जी, लता मंगेशकर जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, आशा भोंसले जी, कुमार सानू जी और उदित नारायण के गाने हर प्लेलिस्ट की जान बने हुए हैं। एंड इसे कहते हैं कि पुराने गानों में वो खास बात होती है जो किसी और गाने में नहीं होती है। तो ऐसा एक और नगमा पेश करने वाले हैं आपके लिए, आपके आरमचू वीडियो मस्ती पर।
0: रेट्रो रिदम
2: आरएम2 रेडियो मस्ती।

0: Retro Rhythm.
1: आप तो पहले से ही साथी बन चुके हैं आरम जो वीडियो मस्ती से जो कनेक्टेड हो गए हैं आप एंड यस अभी सिलसिला जारी है आपके रेट्रो गानों का लेकिन क्या आज कुछ है एंड यस आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे एक छोटा सा प्लास्टिक बैग सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए यूज़ होता है लेकिन उसे ख़त्म होने में लग जाते हैं कई साल इसलिए आज एक छोटी सी हैबिट शुरू करते हैं साथ में अपने रीयूजेबल बैग साथ रखिए नेचर भी बोलेगा थैंक यू जी तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट गाने के साथ आपको फिर से रेट्रो वाइब्स फील कराने के लिए ऑन आरम टू रेडियो मस्ती
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 Radio Musti.

उसके कुछ और यात्री भी उसमें सवार हो गए थे। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। नागिया रोड बागामिया रुजबेल में 68 साल के 68 ईयर ओल्ड के श्री भूपेंद्र नाथ पामिसाव, जो भूपेन से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर बाद के 3 बजे उनके बेटे अग्निश पामिसाव के घर नागिया रोड बागामिया रुजबेल से उठाकर मखिशानी रुजबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।

0: Play. MBC Play. MBCRadio.tv. MBCRadio.tv. Retro Rhythm.
1: RM2.

0: Retro Rhythm.
1: बैक वापस आ गई है नंदनी आपके रेट्रो रिदम की आखिरी आवर के साथ, जहां पर आपके लिए रेट्रो वाइब्स फुल ऑन हो चुका है। आगे बढ़ने से पहले किसी स्पेशल को विश कर देते हैं। आप है कृष्णा लाल नतू जी, कृष्णा फ्लैग के रहने वाले हैं और आज आप मना रहे हैं अपना बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू जी एंड बेस्ट विशेज आपकी पूरी फैमिली की तरफ से। एंजॉय योर डे एंड ये अगला गाना डेडिकेट करते हैं आपके नाम और सभी सुनने वालों के नाम जो अभी कनेक्टेड है आरएम2 रेडियो मस्ती के साथ।

0: Retro Rhythm.
1: इशारे तो मिल रही है व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए कि आप कनेक्टेड हो आरम जो रेडियो मस्ती के साथ। तो चलिए आपके प्यारे मैसेजेस को पढ़ लेते हैं। आप हैं नथुराम जी बाहू रपों प्रमुख से, हेलो। विश्वानी धोमन जी वाक्वा से वाइब कर रही हैं लवली गानों के साथ, और नेक्स्ट गाना डेडिकेट करना चाहते हैं टू हर सिस्टर्स इंदिरा शारदा, और अपनी सहेलियों के लिए नीला प्रतिभा शोभा और गीता के लिए। तो हो जाए आपके लिए ये अगला गाना।
0: Retro Rhythm.
2: RM2. Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम।
1: बिल्कुल सही कहा, हर किसी को किसी ना किसी चीज़ की तलाश तो होती रहती है, किसी को प्यार की, किसी को सुकून की, किसी को अपनी मंजिल की, और कुछ गाने हाय वो दिल की बात बिना कुछ कहे ही कह देते हैं। तो बाकी के मैसेजेस पढ़ लेते हैं। अब्दुल जी और सायरा बानो जी को बड़ा सा हेलो जुड़े रहने के लिए। सोगनाम से हमारे बड़ी आलेश को भी बड़ा सा वेलकम है। फिया जी भी साथ दे रही है, और जेनिफर जी अपने पति विनय के लिए स्पेशल गाना मांग रहे हैं। तो देर ना करते हुए नेक्स्ट वन आ रही है संगम मूवी से।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

0: रेडियो मस्ती।
1: जब प्यार किया तो डरना का, यही स्लोगन पर प्यार करने वालों की ताकत है और इन शब्दों पर कई गाने बन चुके हैं। तो चलिए और एक नगमा हो जाए इस बार मन्ना दे की आवाज़ में, खास आपके लिए, आपके इस आफ्टरनून को रंगीन बनाने के।

0: एक बजकर 55 मिनट एंड इसी के साथ टाइम हो चला है फॉर मी नीलमणि जिसे बाय। आशा है कि आपको रेट्रो वाइब्स पसंद आए। नेक्स्ट आने वाला है आपके लिए बॉम्बे टॉकीज, तो यहीं पर यू स्टे कनेक्टेड आरएम2 रेडियो मस्ती के साथ।
1: रेट्रो रिदम
2: आरएम2 रेडियो मस्ती।

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। एक बार फिर आपसे गीता जी नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी को हमारा नमस्कार। हाल ही में मंत्रिपरिषद ने विश्वविद्यालयों में HIV की रोकथाम के लिए एक कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इसके तहत जागरूकता अभियान, निःशुल्क और गोपनीय जाँच तथा जल्द ही प्री एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। ये पहल मुख्य रूप से युवा वयस्कों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है, क्योंकि मॉरिशस में पिछले 2 वर्षों के दौरान सामने आए HIV संक्रमण के मामलों में 25 से 34 वर्ष आयु वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी 1/3 से ज्यादा रही है। मूडीज रेटिंग एजेंसी ने हालिया बजट के विश्लेषण के बाद मॉरिशस की BAA3 क्रेडिट रेटिंग को बरकरार रखा है। एजेंसी ने सार्वजनिक वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार के प्रयासों, खासकर बजट घाटा कम करने की प्रतिबद्धता की सराहना की है। हालांकि मूडीज ने यह भी चेतावनी दी है कि देश की वित्तीय स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। और अब विदेश खबरें रुद्रानी महावीर के साथ।
2: नमस्कार। भीषण गर्मी और लंबे समय से जारी सूखे के बीच दक्षिणी फ्रांस में जंगलों में लगी आग ने हालात और गंभीर कर दिए हैं। उदित और हेरल्ट क्षेत्रों में कल भड़की आग करीब 900 हेक्टेयर जंगल में फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए 800 से अधिक दमकल कर्मी, 150 दमकल वाहन और 4 वाटर बम्बर विमान तैनात किए गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा कि कमर्शियल जहाज़ों पर हुए हमलों के जवाब में अमरीकी सेना ने लगातार 3 रातों तक ईरान पर हमले किए। ट्रंप ने दावा किया कि इन हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने बार बार ईरान के राडार सिस्टम को नष्ट किया और होमर्स स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल टैंकरों को सुरक्षा दी।
1: इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ देर में शोक समाचार। भागीरथी लेन ओकुले में 86 साल की 86-year-old की कुमारी लीलावती भंजन, जो नत से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर बाद के 3 बजे उनके भाई नारायण दत्त भाई भंजन के घर भागीरथी लेन ओकुले से उठाकर बिगागा का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
3: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
3: Allons chez Loulou. Chez Loulou, Mojo Peach Halves, 820 grammes à 49,50 €. Omega, lait entier en poudre de 1 kg à 199,50 € et recevez un jus Lavie 200 ml en cadeau. Lavage Kiri, 32 portions à 122,50 €.
4: Loulou Hypermarché.

So, well, friends, warm welcome. आप सभी का 2:17 हो रहे हैं. Friday afternoon, 3rd of July. Thank God it's Friday. और मैं हूँ परी आपके साथ. It's time for your Bombay Talkies, the B-Town की updates and some latest tracks. आपके इस Friday को Happy Friday बनाने हम हैं आपके साथ. जानते हैं आप, अगर आप भी connected हैं, your messages, your dedications 5499-1294 पर.

सो माय फ्रेंड्स, अभी के लिए रूदारी ये जो गाना है, इसे हम डेडिकेट करना चाहेंगे फॉर विद्या बीमल. आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं एंड ब्लेसिंग्स उनके लिए फ्रॉम सासुमा अनीता बीमल. सभी बिहारी परिवार है, बगन परिवार और सुया बिहारी ऑफ कुंगुमा लेकर आई हैं उनके लिए स्पेशल विशेज. यहाँ पर अनीता जी हमारा साथ दे रही हैं आप भी. सो थैंक यू सो मच साथ देने के लिए ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती. क्यों पे कहते हैं सर्दियों वाली ये जो आफ्टरनून है, कनेक्टेड है आप हमारे साथ. इट्स सुपर कोल्ड, स्पेशली रात में आप महसूस कर पाती है सुपर ठंड. सो वेल, अपना ख्याल रखिए आप एंड वील हैव सम वंडरफुल सॉन्ग्स जो आपको हमेशा एंटरटेन रखें एंड ऑफकोर्स वो वार्म वाली फीलिंग, प्यार वाली फीलिंग आपके लिए हमेशा ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती. साथ ही यहाँ पर हमारे साथ कनेक्टेड है मिस्टर सूर्या, हमारा साथ दे रहे हैं आप फ्रॉम पोर्ट लुइस एंड वर्किंग राइट नाउ एंड ट्यून टू RM2 रेडियो मस्ती. वी हैव दिस ब्यूटीफुल ट्रैक आपके लिए. जुबिन नौटियाल के फैंस उनका साथ देते हुए मनदीप खुराना, अ ब्यूटीफुल ट्रैक हमारे सभी लिसनर्स के नाम. दैट्स रूहदारी फ्रॉम द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती, सीधा आपके दिल तक. एंजॉय दिस वन.

0: 92 रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
2: Bonjour, on est joint samedi le 11 juillet, Côte d'Or, de NS à 6h pour une compétition concomère, la bosse cambodgienne, très gratuit, le Ontario.
3: Let us, you and I, support the Mauritian youth.

0: FM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं गीता जी. आपको नमस्कार.
6: नमस्कार परी. सभी को हमारा नमस्कार. 1000 से ज्यादा मोबाइल फोन्स, 284 सिम कार्ड्स, मेमोरी कार्ड्स, सिगरेट, अस्थायी रूप से बनाए गए हथियार तथा कई अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं को आज सुबह बुबासैन जेल में नष्ट कर दिया गया. ये कार्रवाई जेल प्रशासन द्वारा कैद खानों में प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी, प्रवेश और उनके उपयोग पर रोक लगाने के लिए किए जा रहे लगातार प्रयासों का हिस्सा है. एमोरिशस के निदेशक ने कल अपने कमर्शियल डायरेक्टर, फ्रांसीसी नागरिक लोरेंट रिकुरा सहित 6 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया. ये फैसला के रोल रिपोर्ट के बेहद गंभीर निष्कर्षों के बाद लिया गया है. हालांकि इस प्रशासनिक कार्रवाई के सटीक कारणों की अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन जाँच रिपोर्ट में विमान लीज के अनुबंधों से जुड़ी कई अनियमितताओं की ओर संकेत किया गया है. लोरेंट रिकुरा को पिछले 2 वर्षों के भीतर दूसरी बार निलंबित किया गया है. और अब विदेश खबरें भारती बिहारी के साथ.
7: फ्रांस ने बताया है कि जून में यूरोप में पड़ी रिकॉर्ड तोड़ भीषण गर्मी की लहर के दौरान पिछले सप्ताह 2000 से अधिक अतिरिक्त मौतें दर्ज की गई. वहीं मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में यूरोप में कई हिस्सों में फिर से अत्यधिक तापमान देखने को मिल सकता है. पाकिस्तान में बलूचिस्तान इलाके में एक यात्री बस के खाई में गिरने से कम 40 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए. बस 36 यात्रियों के साथ क्वेटा से निकली थी, लेकिन रास्ते में खराब हुई एक दूसरी बस के कुछ और यात्री भी इसमें सवार हो गए.
5: और इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार.
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: More music in the mix.
0: Aaj Azadi hai. Bombay Talkies.
3: Radio Musti.
1: Radio Musti.

3:15 और फ्राइडे आफ्टरनून इट्स 3rd of July एंड आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं. बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक लेकर आए हैं आपके लिए सो दैट वी कैन कीप योर मूड सेट फॉर दिस फ्राइडे आफ्टरनून. इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज. बी टाउन की खबरें आप तक पहुंचा रही हैं. चलिए फ्राइडे आज रिलीज हो गई है आलिया भट्ट की मच अवेटेड अल्फा. सो क्या होने वाला है इस फिल्म का, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से और उसके बाद जो फिल्में रिलीज ऑलरेडी हो चुकी है उनका बॉक्स ऑफिस का हाल कैसा है, सारी बातें आपसे शेयर करने वाले हैं, सारी खबरें आप तक पहुँचाने वाले हैं. स्टेबल कनेक्टेड फॉर नाउ वी हैव दिस ब्यूटीफुल गाना अमित त्रिवेदी की आवाज़ और उनका साथ देते हुए अरिजीत सिंह. ब्यूटीफुल ट्रैक फॉर एवरी वन हुज़ कनेक्टेड आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ. हैव अ ग्रेट आफ्टरनून. एंजॉय दिस वन. Yeah.

तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें, फ्राइडे यानी कि आज 3rd of July को सिनेमा घरों में YRF के स्पाई यूनिवर्स की आलिया भट्ट स्टारर फिल्म अल्फा रिलीज हो गई है। और इस नई फिल्म के आने से एक हफ्ते पहले रिलीज हुई वेलकम टू दी जंगल की कमाई पर असर पड़ता नजर आ रहा है। और वहीं 2 हफ्ते पहले आई कॉकटेल 2 भी हाफती नजर आ रही है। चलिए यहाँ पर जानते हैं कि फिल्म फ्राइडे को कितना कलेक्शन कर रही है और ऑक्यूपेंसी कितनी है। YRF के स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड फिल्म अल्फा साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक थी। फाइनली ये सिनेमा घरों में पहुंच गई है और फिल्म में आलिया भट्ट, शर्वरी वाघ, अनिल कपूर, बॉबी दियोल अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं। और इस फिल्म की अगर फ्राइडे के कलेक्शन की हम बात करें तो डे वन 3.05 करोड़, ये टाइम अभी तक जो टाइम चल रहा है, तब तक के लिए हम आपको बता रहे हैं कि अभी तक इस फिल्म ने 3 करोड़ रुपए कमाए हैं और 14% ऑक्यूपेंसी इसे मिली है। कुल कलेक्शन 305 करोड़ और रिलीज हो गई है अल्फा। और इसी के चलते दोनों फिल्में यानी कि कॉकटेल 2 एंड वेलकम टू दी जंगल अब थोड़ा मुसीबतों का सामना करती नजर आ रही है। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि भाई हर फ्राइडे फेट डिसाइड होता है बॉलीवुड फिल्मों का, और अल्फा इसके लिए तो काफ़ी बातें हो रही थी, काफ़ी ट्रोल्स भी हो रहे हैं इसको लेकर, और काफ़ी लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। यानी कि जो आलिया भट्ट के फैंस थे उन्हें एक्शन अवतार में देखने के लिए बेसब्र थे। सो फाइनली ये मौका उन्हें मिल गया है। अब उनका ये एक्शन रोल लोगों को कितना पसंद आता है इसके लिए हमें करना है थोड़ा सा इंतज़ार। फॉर नाउ वी हैव दिस हैप्पी हैप्पी गाना गोज आउट आप सभी के लिए जो हमारा साथ दे रहे हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती। मैं हूं परी आपके साथ एंड इट्स टाइम for your Bombay talkies.

सो वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा साथ दे रहे हैं आप वोटन से लेकर अगर आप साउथ की तरफ जा रहे हैं, स्पेशली नियर द फ्लाई ओवर, वहां पर ट्रैफिक थोड़ा सा स्लो है. एक्चुअली वहां पर एक ऑब्स्ट्रक्शन था, लेकिन ट्रैफिक ब्रांच से बात हुई है, ऑब्स्ट्रक्शन हैज बिन रिमूव्ड और अब ट्रैफिक स्मूथ चलने वाला है. और वैसे भी 4 तो बजने ही वाले हैं, उसके बाद ट्रैफिक की अपडेट्स आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे. अगर आप रास्तों पर है, कुछ अपडेट्स हम तक पहुंचाना चाहते हैं, सो यू ऑलवेज नो 5499 1294 इज द नंबर.

0: Crikey's
1: Radio Musty.
2: Radio Musty.
3: फ्रेंड्स, थोड़ी ही देर में हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर. उससे पहले आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 54991294 पर मिस्टर कुमार देवीचंद काम आ गए हैं और काम से घर आ गए हैं और कहते हैं इट हैज बीन अ लॉन्ग लॉन्ग डे. ऐसे में आप साथ दे रहे हैं विथ योर हॉट हॉट कॉफी एंड एंजॉइंग द सॉन्ग्स. डेडिकेटिंग गाना फॉर पापा श्याम देवीचंद, उनके लिए प्यार एंड स्पेशल विशेज. हैप्पी बर्थडे विशेज ये है फॉर मिस शोभा. गॉड ब्लेस हर एवरी डे. लव यू सो मच मिस शोभा. एंड बेस्ट विशेज आपके लिए, दैट्स कमिंग फ्रॉम सिमी. साथ में है विमला, रघु, निशा, रुशि है, पिंकी, मिमी एंड ललिता जीतन पोटलुस से आपके लिए भेज रही है बहुत सारा प्यार एंड गुड विशेस. नेक्स्ट गाना होगा फॉर हस्बैंड निशान, हु सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे आज. उनके लिए बेस्ट विशेस ये है फ्रॉम वाइफ आशा. उनकी बेटी है जानवी, ममा है सूर्यामती और सभी संपत परिवार लेकर आए हैं उनके लिए स्पेशल विशेस. एंड भगवत विदेशी साथ दे रहे हैं आप. आज आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना बर्थडे ऑन 3rd of July. सो गुड विशेस एंड हैप्पी बर्थडे. चलिए, सो इस ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर. उसके बाद इट्स गोइंग टू बी टाइम फॉर योर फ्राइडे मैशअप. मैं हूं परी आपके साथ शाम के 7 बजे तक.

0: RM2 Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
2: Time check 4 PM. सुनते हैं देश विदेश की खबरें गीता जी से. आपको नमस्कार.
3: नमस्कार परी. सभी को हमारा नमस्कार. 1000 से ज्यादा मोबाइल फोन्स, 284 सिम कार्ड्स, मेमोरी कार्ड्स, सिगरेट, अस्थायी रूप से बनाए गए हथियार तथा कई अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं को आज सुबह बुबासें जेल में नष्ट कर दिया गया. ये कार्रवाई जेल प्रशासन द्वारा कैद खानों में प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी, प्रवेश और उनके उपयोग पर रोक लगाने के लिए किए जा रहे लगातार प्रयासों का हिस्सा हैं. हाल ही में मंत्रिपरिषद ने विश्वविद्यालयों में HIV की रोकथाम के लिए एक कार्यक्रम को मंजूरी दी थी. इसके तहत जागरूकता अभियान, निशुल्क और गोपनीय जांच तथा जल्द ही प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी. ये पहल मुख्य रूप से युवा वयस्कों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है, क्योंकि मॉरिशस में पिछले 2 वर्षों के दौरान सामने आए नए HIV संक्रमण के मामलों में 25 से 34 वर्ष आयु वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी 1/3 से अधिक रही है. और अब विदेश खबरें रुद्रानी के साथ.
4: नमस्कार. फ्रांस ने बताया है कि जून में यूरोप में पड़ी रिकॉर्ड तोड़ भीषण गर्मी की लहर के दौरान पिछले सप्ताह 2000 से अधिक अतिरिक्त मौतें दर्ज की गई. वहीं मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में यूरोप के कई हिस्सों में फिर से अत्यधिक तापमान देखने को मिल सकता है. भीषण गर्मी और लंबे समय से जारी सूखे के बीच दक्षिणी फ्रांस में जंगलों में लगी आग ने हालात और गंभीर कर दिए हैं. उदित और हेरल्ड क्षेत्रों में कल भड़की आग करीब 900 हेक्टेयर जंगल में फैल गई. आग पर काबू पाने के लिए 800 से अधिक दमकल कर्मी, 150 दमकल वाहन और 4 वाटर बम्बर विमान तैनात किए गए हैं. पाकिस्तान में बलूचिस्तान इलाके में एक यात्री बस के खाई में गिरने से कम 40 लोगों की मौत हो गई है और 8 अन्य घायल हो गए. बस 36 यात्रियों के साथ क्वेटा से निकली थी, लेकिन रास्ते में खराब हुई एक दूसरी बस के कुछ और यात्री भी इसमें सवार हो गए.
2: और इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार.
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: It's not just about the music, it's about the feeling.
1: Friday Mashup, Friday Mashup.
0: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: Friday Mashup.
1: RM2 Radio Musti.
2: सो वेल फ्रेंड्स, 4:07 हो चुके हैं एंड बिग बिग हेलो हमारे सभी लिसनर्स का जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं. मैं हूं परी आपके साथ. इट्स टाइम फॉर योर फ्राइडे मैशअप. आपके इस फ्राइडे को बनाने खास एंड स्पेशल हमारे RM2 की टीम हमेशा आपके साथ. सो वेल, अभी से लेकर कुछ घंटों तक होने वाला है आपका फ्राइडे एकदम मस्त, म्यूजिकल एंड मेमोरेबल, बिकॉज आपकी इस राइड को हम बनाने वाले हैं वेरी स्पेशल. वीकेंड तो बस कुछ ही घंटों की दूरी पर है. ऑफिस में है, शॉप पर है, ट्रैफिक में फंसे हैं या घर की तरफ निकल चुके हैं, वॉल्यूम थोड़ा सा हाई कर दीजिए बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल राइड आपके लिए. जिस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सभी लिसनर्स, आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं. वार्म वेलकम आप सभी का ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती. एंड यहां पर वी हैव अ स्पेशल डेडिकेशन ऑलरेडी. आज कृष्णलाल नतू रिश्मा फ्लक से अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, 84th बर्थडे. सो कृष्णलाल जी, लोड्स ऑफ गुड विशेस ऑन योर स्पेशल डे. हैप्पी वाला बर्थडे आपको, आपके पूरे परिवार की ओर से, साथ ही हमारी रेडियो मस्ती टीम विशिंग यू अ हैप्पी हैप्पी बर्थडे. सो वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ऐसी ही कुछ स्वीट विशेस आपके पास भी है तो रहेगा आपका इंतजार ऑन अ मैजिकल नंबर जो है 5499-1294.
3: कभी स्पाइसी कभी स्वीट, म्यूजिक लवर्स की हार्ट बीट.
4: टक टक बॉलीवुड.

ये तो फैक्ट है दोस्तों कि अगर लाइफ में मस्ती ना हो तो लाइफ एकदम फीकी फीकी सी लगती है. आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग डे इट्स टाइम कि हम आपको थोड़ा सा रिलैक्स करें. कुछ ऐसे गाने लेकर आए हैं जो आपके मूड को सेट रखने वाले हैं अभी से लेकर जब तक आप अपने घर तक पहुंचे. सो वेल दोस्तों, इट्स टाइम फॉर योर फ्राइडे मैशअप. मैं हूं परी आपके साथ. शो में होने वाले हैं कुछ ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड हिट्स, फील गुड मेलोडीज, फ्राइडे पार्टी वाइब्स और साथ ही साथ आपसे हम शेयर करने वाले हैं ट्रैफिक अपडेट्स एंड स्पोर्ट्स अपडेट्स एज वेल. सो सब कुछ खास आपके लिए ऑन दिस फ्राइडे आफ्टरनून. For now, we have this one. Hamari sabhi listeners ke naam. Enjoy this one and have a safe ride back home.

0: Friday Mashup.
1: RM2 Radio Musti.
2: So, well, friends, 4:25 हो गए हैं and it's time for quick traffic updates जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं. अगर ऑफिस से निकल चुके हैं घर तक जाने के लिए सो ड्राइव सेफली और पेशेंस जरूर रखिए. पीक आवर्स चल रहे हैं इसलिए मेजर रोड पर ट्रैफिक एक्सपेक्टेड है एंड स्पीड से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने डेस्टिनेशन पर सेफली पहुंचे. सो आराम से ड्राइव करें, लेन डिसिप्लिन मेंटेन करें, अननेसेसरी ओवरटेकिंग से बचे और आराम से सेफली अपने घर तक पहुंचे. सो लेट मी टेल यू, अगर आप पोर्ट लुइस से साउथ की तरफ जा रहे हैं वहां पर हल्का हल्का ट्रैफिक और पोर्ट लुइस से अगर नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं वहां पर भी हल्का ट्रैफिक नजर आ रहा है. साथ ही यहाँ पर जो सेंट जॉन का रास्ता है, फीनिक्स है, हाइलैंड्स मोटरवे, वहां पर भी स्लो स्लो ट्रैफिक है, यानी कि मूविंग ट्रैफिक, लेकिन धीरे धीरे ट्रैफिक आगे बढ़ रहा है. साथ ही यहाँ पर रेजवे पर भी राउंड अबाउट पर वी कैन सी हल्का सा ट्रैफिक. अगर आप क्यूपिप की तरफ जा रहे हैं सो वहां पर भी है हल्का हल्का ट्रैफिक. एंड वेल फ्रेंड्स, यहाँ पर अपडेट्स तो हम आप तक पहुंचा रहे हैं. सो नो एक्सीडेंट्स, नो इंसिडेंट्स की रिपोर्ट है फॉर नाउ. एंड अगर आप रास्ते पर है कुछ अपडेट्स हम तक पहुंचाना चाहते हैं 5499-1294 इज द नंबर. So, चलिए आराम से ड्राइव करें, डेस्टिनेशन पर सेफली पहुंचे. आज फ्राइडे है सो आपके मूड को हम सेट रख रहे हैं. इट्स टाइम फॉर योर फ्राइडे मैशअप. परी का साथ है शाम के 7 बजे तक. गुड म्यूजिक आप तक पहुंचा रहे हैं एंड ऑफ कोर्स आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर.

0: Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: सो वेल फ्रेंड्स, टाइम हो चला है जहां पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड की लेटेस्ट अपडेट्स हम आप तक पहुंचाए. स्टूडियो में आ गए हैं हमारे स्पोर्ट्स गुरु अरविंद. हेलो एंड गुड आफ्टरनून.
4: हेलो आपको. हेलो रेडियो मस्ट लिसनर्स. सो वर्ल्ड कप के बारे में बात करने से पहले ये बता दें कि यर्गन क्लॉप और जर्मनी के बीच बातचीत हो रही है. नागेलस्मैन रिजाइन कर गया वर्ल्ड कप डिबैकल के बाद. सो जर्मनी की टीम का बागडोर संभालने के लिए यर्गन क्लॉप शायद इसी समय का इंतज़ार कर रहा था. वो जब से लिवरपूल से गया कहीं पर मैनेजर नहीं था और उसने कहा था कि वो खुश हैं अगर मेंस नेशनल टीम का कोच वो बन जाए. आज वर्ल्ड कप जारी है और अर्जेंटीना वर्सेस केप वर्दे. बहुत लोग कह रहे हैं कि ये हाथी और चीती के बीच मुकाबला है, पर क्योंकि अर्जेंटीना इज द डिफेंडिंग चैंपियन, केप वर्दे पहली बार के लिए वर्ल्ड कप में खेल रही है एंड दे हैव क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड. सो कहा जा रहा है ब्रेकिंग डाउन द बिगेस्ट वर्ल्ड कप नॉकआउट मिसमैच. एक तरफ लियोनेल मेसी है और केप वर्दे का गोलकीपर वोजिन्हा. लियोनेल मेसी को शांत रखना थोड़ा आसान होगा. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, टॉप स्कोरर. सो लियोनेल मेसी वर्सेस वोजिन्हा, ये एक वर्ल्ड कप बैटल है जो सभी लोग देखना चाहेंगे. अर्जेंटीना और केप वर्दे मायामी स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा और साथ साथ में इस मैच में ये भी देखना है कि केप वर्दे कहाँ तक इस टीम को रोक पाएगी. केप वर्दे और यूरोपियन चैंपियन की स्पेन को उसने ड्रॉ किया था, उससे ड्रॉ किया था, इसीलिए उम्मीद की जा रही है. सो थ्री टाइम वर्ल्ड कप विनर्स वर्सेस द डेब्यूटेंट्स, ये मैच आज. बाकी जो फिक्स्चर्स हैं इस पर भी आपको बता दें. सो ऑस्ट्रेलिया और इजिप्ट के बीच मैच है ये आज रात्रि के 10 बजे. ऑस्ट्रेलिया इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया द सोकरूज वर्सेस द फराओ. इजिप्ट की टीम पहले अपने ग्रुप में पहले आई थी जबकि ऑस्ट्रेलिया सेकेंड. सो दो अलग अलग स्टाइल की फुटबॉल जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इजिप्ट में से कौन आगे जाएगा ये कहना मुश्किल होगा. फिर 1 बजे अर्जेंटीना वर्सेस केप वर्दे और आज रात कल सुबह मैच है कोलंबिया और गाना के बीच. दैट मीन्स कि ये जो लास्ट 32 है ये राउंड कल सुबह 5:30 बजे पूरा हो जाएगा. उसके बाद कल ही वीसीएमडे फिनाल यानी बेस्ट ऑफ 16 शुरू होने वाले हैं. कनाडा वर्सेस मोरक्को, पैराग्वे वर्सेस फ्रांस. कनाडा मोरक्को ये कल 9 बजे और पैराग्वे फ्रांस ये सुबह संडे सुबह 1 बजे. और संडे रात को ये होगा मिडनाइट किक ऑफ ब्राजील वर्सेस नॉर्वे. सो शुरू अब बेस्ट 32 से बेस्ट 16. बता दें आपको कि आज का जो मैच है ऑस्ट्रेलिया और इजिप्ट ये आप लोग लाइव देख पाएंगे. इस पर आपको समय समय पर जानकारियां देते रहेंगे. और फुटबॉल के अलावा ट्रांसफर बाजार में भी काफी कुछ होने लगा है, खासतौर पर टोटनहैम हॉटस्पर को लेकर.

0: टोटनहम हॉटस्पर और खिलाड़ियों को साइन करना चाहता है, अब भी कौन आएंगे। कुछ फ्री ट्रांसफर भी हो सकते हैं, चार पांच ऐसे खिलाड़ी हैं जो फ्री ट्रांसफर में आ सकते हैं, तो ये देखना है। इधर रियल मैड्रिड उसने कहा कि दे हैव नो इंटेंशन ऑफ साइनिंग फर्नांडेज, तो फर्नांडेज अभी जो खेल रहा है अर्जेंटीना टीम के साथ, और बाकी टीमें भी इंतजार कर रहे हैं वर्ल्ड कप को समाप्त होने के लिए ताकि कुछ खिलाड़ियों को खरीदा जा सके। बोर्नमुथ 25.7 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर एल्चे के स्ट्राइकर रोड्रिगेज को साइन कर लिया है, और लिवरपूल नापोली ने अलेग्री को साइन किया है आज कॉन्टेज सक्सेसर, जबकि लिवरपूल कुछ ऐसे खिलाड़ियों के पीछे हैं जिनके लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा फ्री ट्रांसफर, कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं। और उधर स्पर्स स्पेंडिंग स्प्री में हैं, अभी वीकेंड के दौरान और कुछ खिलाड़ियों को साइन किया जा सकता है। विल टॉक अबाउट टेनिस जहां पर विंबलडन ओपन जारी है और आज कुछ इंटरेस्टिंग मैच होंगे, जोकोविच रिंडरनेक्च, फिर सबालेंका ओस्टापेंको, ओगा आलियासी में अगेंस्ट जेंग, ओसाका अभी का कीना को 5-0 से हरा रही है, सीना का मुकाबला होगा ब्रुक्स बी से, गोफ विल बी अगेंस्ट लियू, दोनों यूएसए की हैं, फोनसेका को हराया साफियोलिन ने आज राउंड ऑफ 32 में ही, पेगुला विल बी प्लेइंग अगेंस्ट बुजास मानेरो, हुरकाज अगेंस्ट पोल, और बेंसिच कालिंस्काया ये मैच अभी जारी है, बेंसिच ने पहला सेट जीता, कालिंस्काया ने दूसरा, और तीसरा भी 4-4 पर है। मेडवेडेव खेलेगा स्ट्रूफ के खिलाफ, मुचुआ अगेंस्ट सावांकायू, ये विंबलडन के मैच हैं। और क्रिकेट में क्रिकेट आज सुबह आप लोगों को बता रहे थे, इंग्लैंड की टीम महिला टीम T20 टीम रीच द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच है, और वेस्ट इंडीज श्रीलंका ये सेकेंड टेस्ट आज 6 बजे शुरू होगा। टीम इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच मैच चल रहा है, श्रीलंका ए 366 रन बना पाई, अभी इंडिया की टीम एक विकेट के नुकसान पर बैटिंग आ 247, और वीकेंड के दौरान इंग्लैंड और इंडिया के बीच T20 मैच खेले जाएंगे, जो जहां पर वेटिंग फॉर वैभव सूर्यवंशी टू स्टार्ट। सो देखते हैं आगे, आज के मैच कल रिजल्ट आपको देंगे जरूर, भूलिएगा नहीं, आज खेल खिलाड़ी प्रोग्राम जरूर देखिएगा, ये होता है MBC 3 पर 8 बजे, जिसमें अभी तक यानी बेस्ट ऑफ 16 के जो मैच हैं उनके सभी गोल आपको दिखाएंगे, और कुछ एक स्पेशल क्वीज लेकर आए हैं वर्ल्ड कप पर आधारित, वो भी आप जरूर देखिएगा, और आपको पता चलेगा कि हाउ मच यू नो अबाउट द क्रिकेट, यानी क्रिकेट फुटबॉल सब कुछ है उसमें, जरूर देखिएगा आज 8 बजे MBC 3 पर। That's it.
1: So thank you so much इन सारी जानकारियों के लिए, and stay connected RM2 Radio Masti के साथ।
2: This magazine was brought to you by Quality Deco, the floor expert.
3: Mega promo code Quality Deco. Tiles 30x30. Mega deal, low tiles 60x60. Super sales, low granite quartz. Ricasse low lavo. La lumière moderne, prix soc. L'ordoise, aban prix qui pouvait ou même gagne pas quoi. Décoration pour la case, en dents, en déo. Sanité.

So well friends, that's your Radio Masti, जहां पर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं. It's 4:44 और आपके लिए good music हमेशा. आपके लिए बस ऐसे ही कुछ प्यारे गाने जो आपके मूड को हमेशा सेट रखे. और आज तो है Friday afternoon, so let's make it special. हमारे सभी listeners जो हमारा साथ दे रहे हैं, sending loads of good wishes. आराम से drive करें, destination पर safely पहुंचे. Good music आपके लिए, आपके मूड को सेट रखने के लिए. So we have Nitin Bali की आवाज. Enjoy this one.

0: Friday mashup.
1: RM2, Radio Musty.
2: So well friends, it's time to read out aapke messages, aapke dedications on 5499-1294. It's 4:52 Friday afternoon, 3rd of July. Connected hai aap RM to Radio Masti ke saath aur main hu pari aapke saath lekar your Friday mashup. So well, yahan par Ratina and Nitin, they are celebrating their wedding anniversary aaj. Unke liye love and happiness coming from Mama Sangeeta, late Papa Raghunath ji. Saath mein hai sisters Sheetal, Medha, unke jija ji hai Vicky, Manish, niece Shreya, nephew Aryan, Neil and all Dyal family. मोटाई ब्लॉन्ड से एंड रामधनी परिवार सुरिनाम से भेज रहे हैं उनके लिए प्यार एंड स्पेशल स्पेशल विशेस. और चलिए यहाँ पर सिलेक्शन को एंजॉय कर रहे हैं आप है प्रकाशवती जी एंड स्थिति हमारे साथ कनेक्टेड है ऑल द वे फ्रॉम बेल्जियम. सो बेल्जियम की सर्द हवाओं से आप हम तक पहुंचे हैं. सो यहाँ पर से भी हम आपके लिए भेज रहे हैं बहुत सारा प्यार फ्रॉम मॉरिशस लोड्स ऑफ लव टू यू. और चलिए साथ ही साथ आपको बता दें यहाँ रोड्रिक से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे कुछ दोस्त रमेश है संदीप है सलीम है एंजॉय कर रहे हैं एंड ऋतिक की तरफ से उनके लिए स्पेशल डेडिकेशन लिसनिंग नाउ फ्रॉम रोड्रिक्स. सो थैंक यू सो मच इतने प्यार से आप हमारा साथ दे रहे हैं. एंड वी ऑल्सो हैव नीमा जीवन मोडाल बे से लिसनिंग टू द प्रोग्राम राइट नाउ. इस वक्त डिनर तैयार हो रहा है और कहते हैं मूड को चेयर अप करने के लिए गाने तो है एकदम परफेक्ट. साथ में यहाँ पर याद कर रहे हैं हबी विशाल आपके 3 बेटे यादव नीलेश एंड विरेश और सभी के लिए प्यार एंड हैप्पी वीकेंड विशेज ये भेजी है आपने सभी के लिए. सो वेल फ्रेंड्स ऐसे ही साथ निभाते रहिए थोड़ी ही देर में हम बढ़ने वाले हैं टुवर्ड्स योर इंग्लिश फ्लैश न्यूज़. परी का साथ रहेगा ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती.

तो चलिए दोस्तों अभी के लिए अरमान मलिक नीति मोहन की आवाज़ें वी हैव दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग टू गेट यू इन योर फ्राइडे मूड। काम से निकल चुके हैं, रास्ते पर अटके हैं, लेकिन पेशेंस पेशेंस इज द मंत्र। आराम से ड्राइव करें, डेस्टिनेशन पर सेफली पहुंचे। गुड म्यूजिक आपके लिए सेट हो चुका है हमारे इस प्यारे से रेडियो स्टेशन पर। साथ निभाते रहिए, मैसेजेस डेडिकेशंस पहुंचाते रहिए। रहेगा इंतजार 5499-1294 पर।

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
1: वेलकम टू RM2
2: रेडियो मस्ती।
3: नॉर्थ, साउथ,
4: 103.5,
3: ईस्ट, वेस्ट,
4: 96.4,
3: सेंटर,
4: 99.4।
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Friday afternoon, exactly 5 PM. Time for your English news updates.

0: Friday Mashup.
1: RM2, Radio Musti.
2: So that was Dil Mera, aap sab ke liye jo is waqt hamara saath de rahe hain, 5:09, and thank you so much for choosing RM2 Radio Masti as your radio partner. Bas aapke is afternoon ko hame khas banana hai aur weekend to bas aa hi gaya hai. Khushiyan to aapke darwaze par knock knock kar rahi hai, and well friends, aapke Friday evening mood ko set karne ke liye hum to bilkul aapke saath hai. So main hu pari aapke saath, it's time for your Friday mashup. Abhi se lekar shaam ke 7 baje tak I am going to give you company aur aap bhi hamare saath jude hue hain. So enjoy your time. ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, आराम से रिलैक्स करते हुए आप घर पर पहुंचे. स्ट्रेस लेने से ट्रैफिक तो कम होगा नहीं, लेकिन आराम से थोड़ा सा म्यूजिक को एज अ थेरेपी ले लीजिए और फिर गानों को एंजॉय करते करते आपको पता ही नहीं लगेगा कि घर कब आ गया. तो चलिए, आपकी इस ड्राइव को हम बनाने वाले हैं खास एंड स्पेशल. अगर ऑलरेडी घर पहुंच चुके हैं, अभी भी काम पर अटके हुए हैं, सो यू कैन सेंड अस योर मैसेजेस 5499 1294 पर. मैं करूंगी आपका इंतजार.

So well friends, धक धक बॉलीवुड, दिल से बॉलीवुड, ये है आपका अपना RM2 रेडियो मस्ती. फ्राइडे आफ्टरनून है, 5:13 हो गए हैं. तो गेट यू इन द मूड, कुनाल गांजा वाला, श्वेता जावेद अली की आवाजें फ्रॉम द फिल्म नील एंड निकी. वी हैव दिस वन आप सभी के लिए साथ दे रहे हैं. एंजॉय दिस वन.

0: Friday Mashup.
1: RM2 Radio Musti.
2: So, चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं यू आर एंजॉयिंग द सॉन्ग्स एंड यू आर एंजॉयिंग योर फिल्मी राइड जिसे हम बना रहे हैं खास एंड स्पेशल RM2 रेडियो मस्ती हमेशा आपके साथ. सो वेल, आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस यहां पर पहुंच गए हैं 5499-1294 पर. विजया जी, अपना स्वीट सा हेलो आपने हम तक पहुंचाया. सो आई डू होप यू एंजॉयिंग योर फ्राइडे आफ्टरनून रेडियो मस्ती के साथ. अगला गाना आपके नाम. एंड ऋषि विदेशी हमारा साथ दे रहे हैं, कहते हैं गुड आफ्टरनून परी, गुड आफ्टरनून आपको ऋषि जी, एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ कनेक्टेड हैं आप. कहते हैं गाना हो जाए फॉर ऑल RM2 लिसनर्स, स्पेशली फॉर गुड फ्रेंड, और अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑन 22nd of July, और उनके लिए स्पेशल विशेज. चलिए, ये है आपके स्पेशल फ्रेंड के नाम सोबेल, उनके नाम होगा एक स्वीट सा डेडिकेशन. साथ ही यहाँ पर निशान सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना बर्थडे आज ही, और उनके लिए स्पेशल विशेज, बेस्ट विशेज कमिंग फ्रॉम चाचा प्राण संपत, उनके लिए भेजा है प्यार एंड गुड ही गुड विशेज. कुमार देवी चैन साथ दे रहे हैं आप. कुकिंग का टाइम हो चुका है और कुक करते हुए लिसनिंग टू RM2 रेडियो मस्ती. थैंक यू जी, गाना आपके लिए. साथ देने के लिए शुक्रिया ऑन रेडियो मस्ती, एंड आपके मैसेजेस हम तक पहुंचाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच. आज कुशाल एंड आशी अपनी मैरिज वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं. एक्चुअली इट्स देयर सिविल वेडिंग एनिवर्सरी आज. उनके लिए बेस्ट विशेस, दैट्स कमिंग फ्रॉम ऑल देयर लव्ड वंस. अमृता हमारा साथ दे रही हैं आप, और कहती हैं आज पुपू कुसान बयानी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, और उनके लिए बहुत सारी गुड विशेस, जन्मदिन की शुभकामनाएं. यह है सभी बाबूराम परिवार की ओर से, और हमारी RM2 रेडियो मस्ती टीम भी उन्हें विश करना चाहेंगी अ वेरी हैप्पी बर्थडे. पंकुरी के नाम गाना, दैट्स कमिंग फ्रॉम धनराज, एंड स्वीट बेबी अंजलि के लिए बहुत सारा प्यार, दैट्स कमिंग फ्रॉम काव्या.
1: RM2 रेडियो मस्ती.

0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
1: Friday Mashup
2: RM2 Radio Musti।
3: So well friends, अब वक्त हो चला है फैशन टिप ऑफ द डे का और एक सिंपल व्हाइट शर्ट या फिर बेसिक ब्लैक टी शर्ट कभी भी आउट ऑफ स्टाइल नहीं होता। बस उसे आपको पेयर करना है स्टाइलिश वॉच, मिनिमल एक्सेसरीज एंड क्लीन स्नीकर्स के साथ और आपका लुक इंस्टेंटली क्लासी और एफर्टलेसली फैशनेबल लगने लगेगा। याद रखिए कि फैशन जो है वो एक्सपेंसिव कपड़ों से नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट आउटफिट। वेयर इट ऑलवेज, स्टे मैजिकल एंड स्टे म्यूजिकल।
0: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.
4: Kabhi spicy, kabhi sweet, music lovers ki heartbeat.
5: Tak tak Bollywood.
6: Tak tak Bollywood.
7: Radio Masti.

0: RM2
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: And well friends, it's 5:56 with this track हम बनने वाले हैं आपके समाचार बुलेटिन की ओर. आप साथ दीजिए हमारा on RM2 Radio Masti. परी का साथ शाम के 7 बजे तक. समाचारों के बाद एक बार फिर आएंगे आपसे मिलने. तब तक के लिए we have this beautiful song आप सभी के नाम.

शुक्रवार 3 जुलाई 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सब लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। 1300 से अधिक मोबाइल फोन आज सुबह बुबा सेंट जेल के प्रशिक्षण केंद्र में नष्ट किए गए। प्रिजन

0: हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्राइम विजन एक आधुनिक सॉफ्टवेयर है जो वास्तविक समय में हमलों का पता लगाकर तुरंत अलर्ट भेज सकता है। मॉरिशस के एक आईटी पेशेवर द्वारा विकसित इस परियोजना ने हाल ही में एमआरआईसी के नेशनल इनोवेशन चैलेंज में सामान्य श्रेणी का पुरस्कार जीता है। एमआरआईसी अब ऐसे नवाचारों को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए समर्थन देने की योजना बना रही है। विदेश में जून के अंतिम सप्ताह में यूरोप में आई भीषण गर्मी के दौरान फ्रांस ने 2000 से अधिक अतिरिक्त मौतों में वृद्धि दर्ज की है। मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में और अधिक चरम तापमान की चेतावनी भी दी है। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। 22 अप्रैल 2020 में एयर मॉरिशस को स्वैच्छिक प्रशासन के तहत रखा गया। उस समय प्रशासनिक परिषद ने बताया कि कोविड-19 महामारी और सीमाओं के बंद होने के कारण एयरलाइन अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा करने की स्थिति में नहीं रह गई थी। इसके बाद प्रशासकों की नियुक्ति की गई, फिर एक व्यापक पुनर्गठन योजना की शुरुआत हुई। कर्मचारियों की संख्या घटाई गई, नकदी जुटाने के लिए 5 विमानों को बेचने का फैसला लिया गया। करीब 17 महीने बाद वर्ष 2021 में एयर मॉरिशस स्वैच्छिक प्रशासन से बाहर आ गई। एक साल बाद एयरलाइन ने अपने फ्लीट को मजबूत करने के लिए 2 एयरबस विमानों को लीज पर लेने की घोषणा की और अगले वर्ष एक नया विमान भी खरीदा। इन्हीं 3 सौदों ने वर्ष 2025 में कंपनी की कमान संभालने वाले नए प्रबंधन का ध्यान अपनी ओर खींचा। मार्च 2025 में उन्होंने स्वतंत्र जांच के लिए क्रोल फर्म को नियुक्त करने का फैसला लिया। जांच रिपोर्ट एयर मॉरिशस को सौंपे जाने के बाद उसकी शुरुआती निष्कर्षों का खुलासा पिछले मंगलवार प्रधानमंत्री ने संसद में किया। ये घोषणा उस बयान के एक दिन बाद आई जिसमें पायों के बिल्डिंग से कहा गया था कि एयरलाइन अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। इन कदमों में संबंधित तथ्यों को सक्षम अधिकारियों तक पहुंचाना शामिल हो सकता है। आवश्यकता पड़ने पर ये जानकारी फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन और पुलिस को भी सौंपी जा सकती है। इसके अलावा कंपनी के पास उपलब्ध सिविल कानून उपायों का सहारा लिया जा सकता है और कानून के प्रावधानों के अनुरूप उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। खबरों को आगे बढ़ाते हैं। 1300 से अधिक ये संख्या उन मोबाइल फोन्स की है जिन्हें आज सुबह बुबासैन जेल के प्रशिक्षण केंद्र में नष्ट किए गए सबूतों में शामिल किया गया है। पिछले बार ऐसी विनाशकारी कार्रवाई 2019 में हुई थी। ये प्रतिबंधित वस्तुएं तलाशी के दौरान जब्त की गई थी या उन्हें दीवारों के ऊपर से फेंककर जेल में भेजने की कोशिश के दौरान पकड़ा गया था। पहले से ही अधिक सख्त और व्यवस्थित निरीक्षण लागू किए जा रहे हैं। प्रिजंस कमिश्नर ने कहा कि उन्हें अपनी टीम के सहयोग से इस तरह की अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाने का पूरा भरोसा है। अक्टूबर महीने से प्लास्टिक की बोतलों पर लगने वाला 2 रुपए का टैक्स सभी उत्पादों पर बिना किसी भेदभाव के लागू कर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य इनके उपयोग को कम करना और रिसाइकलिंग के लिए धन जुटाना है। लेकिन ये कदम सर्वसम्मत नहीं है, खासकर इसलिए क्योंकि कई उत्पादों के लिए अभी भी प्लास्टिक का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके वास्तविक समय में हमलों का पता लगाना ये क्राइम विजन का एक अत्याधुनिक प्रोजेक्ट है। मॉरिशस के एक आईटी पेशेवर द्वारा विकसित ये सॉफ्टवेयर जो तुरंत अलर्ट देने में सक्षम है ने हाल ही में एमआरआईसी के नेशनल इनोवेशन चैलेंज में सामान्य श्रेणी का पुरस्कार जीता है। मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल पुरस्कृत परियोजनाओं का समर्थन करना जारी रखने की योजना बना रही है ताकि उन्हें बड़े पैमाने पर अपनाया जा सके। कृष्ण सिचिया की रिपोर्ट पर पेश है ये विवरण। हिंसा की घटनाओं का रियल टाइम में पता लगाने वाला एक सॉफ्टवेयर, यही विचार आईटी क्षेत्र के विशेषज्ञ निविन के मन में आया। क्राइम विजन नाम का ये सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से संदिग्ध हिंसक गतिविधियों की पहचान करता है और तुरंत अलर्ट भेजता है।
1: Crime Vision, c'est un projet qui émerge suite à, comme je peux dire, un rapport statistique.

0: मोशस।
1: स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की एक हालिया रिपोर्ट पढ़ते समय क्राइम विजन का आइडिया मुझे आया, जहां अपराधों की संख्या मॉरिशस में कम हुआ पर अपराधों की तीव्रता और गंभीरता बढ़ती जा रही है। जो कैमरा चारों ओर है पर ये फेस रिकॉग्निशन यानी चेहरे की पहचान नहीं करता और व्यक्तिगत गोपनीयता का सम्मान करते हुए ये हिंसक गतिविधियों की पहचान करता है। नेशनल इनोवेशन चैलेंज के हालिया संस्करण में सामान्य श्रेणी के विजेता रहे। इस परियोजना का आम लोगों के लिए एक निशुल्क संस्करण फिलहाल अंतिम चरण में है। इसमें भेजे जाने वाले अलर्ट को उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार सेट कर सकेंगे। ग्राहक उदाहरण के रूप में चुन सकता है कि उसे लाइट नहीं चाहिए बल्कि उसे मैसेज व्हाट्सएप पर भेजना है, या विभिन्न विभागों में वह ईमेल भी भेजना पसंद कर सकता है। इस परियोजना को अभी और बेहतर बनाने की आवश्यकता है, जिस पर निवी ने लगातार काम कर रही है। उनकी तरह कई अन्य प्रतिभागियों को भी उनके नवाचारों के लिए सम्मानित किया गया। मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के स्तर पर सहयोग केवल पुरस्कार देने तक ही सीमित नहीं रहता। हम ये करते आए हैं जहां हम संबंधित अधिकारियों को किसी अत्यंत ही नवाचारी परियोजना के बारे में सूचित करते हैं जिसको अपनाया जा सकता है और काबिल भी है। हमारे पास स्कीम भी उपलब्ध है जहां विजेताओं को अपनी परियोजनाओं को और विकसित करने में मदद मिल सकती है। इस परियोजना को व्यवहार्य, सुरक्षित, विपणन योग्य और सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं, ताकि हम उन्हें अनुसंधान समन्वयकों के संपर्क में डाल सके जो उनकी परियोजनाओं को परिष्कृत करने के लिए धन जुटाने में उनका मार्गदर्शन करें। चौथे संस्करण में सभी श्रेणियों को मिलाकर कुल 287 प्रतिभागियों ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए। हर परियोजना अपने आप में नई सोच और संभावनाओं से भरपूर नजर आई। खबरों का आगे बढ़ाते हैं, बात करें फुटबॉल के बारे में। स्पेन का 2026 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन जारी है। लाहोजा ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर बहुत ही प्रभावशाली ढंग से राउंड 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। ये एक दमदार प्रदर्शन है जो टूर्नामेंट में उनके प्रबल दावेदार होने की पुष्टि करता है। आश्ले सिताना की रिपोर्ट पर अरविंद बिसेसर का विवरण।
2: वर्ल्ड कप में लाहोजा का सुहाना सफर जारी है और इस बार ऑस्ट्रिया को हराकर आगे बढ़े। मैच में सॉलिड रहे और अच्छा फुटबॉल का प्रदर्शन स्पेन की टीम जल्द ही मैच पर पकड़ मजबूत कर लेती है। मिकेल ओयोजाबाल 36वें मिनट पर पहला गोल स्कोर करता है मार्क कुहेला के पास पर। सेकेंड हाफ में पेड्रो पेहो दूसरा गोल बनाता है और ओयोजाबाल फिर से एक गोल स्कोर करता है, इस बार फिर कुकुरेला के पास पर। दो गोल स्कोर किया ओयोजाबाल ने और इस प्रकार डिफेंस जो है स्पेन का, उसे अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है, एक भी गोल कंसीड नहीं किया है। इस क्लीन शीट के पीछे उनाई साइमन का हाथ है जो 519 मिनट तक अजीत है और ये रिकॉर्ड वोल्ट जेंगा का था वर्ल्ड कप में। 3-0 की जीत। अब अगले राउंड में स्पेन का मुकाबला पोर्टुगल से होगा।
1: और 2026 विश्व कप में शुक्रवार रात यानी कि आज रात को राउंड 16 के अंतिम फैसले हो जाएंगे। क्वार्टर फाइनल के लिए बची हुई 3 जगहें आज तय की जाएंगी। अपेक्षित पसंदीदा टीमों और हैरान कर देने वाले प्रदर्शन वाले करने वाली टीमों के बीच दबाव अपने चरम पर है। मारिन रेसिजी की रिपोर्ट पर एक बार फिर अरविंद बिसेसर का विवरण।
2: बेस्ट ऑफ 32 के 3 अंतिम मैच आज और कल सुबह खेले जाएंगे। आज रात 10 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इजिप्ट से। दी सोकरूज जो अपने ग्रुप में दूसरे स्थान पे आए थे अपना सफर जारी रखना चाहेंगे और बर उनके सामने है मोहम्मद सलाह की टीम इजिप्ट। इजिप्ट की टीम ग्रुप जी में पहले स्थान पे आई थी बेल्जियम से आगे। सो इस प्रकार ये मैच कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल होगा। ऑस्ट्रेलिया और इजिप्ट दोनों अच्छी अच्छी टीमें हैं। सुबह 2 बजे अर्जेंटीना और केप वर्दे के बीच मैच। लालबी सिलेस्ते अपने ग्रुप में पहले स्थान पर आई थी 3 जीतों के साथ। लियोनेल मेसी 6 गोल स्कोर कर चुका है। देखा जाए तो वर्ल्ड चैंपियन फेवरेट हैं, लेकिन ब्लू शॉक्स कुछ करना चाहते हैं इस वर्ल्ड कप में। एक ऐतिहासिक

डोमेस्टिक वर्ल्ड कप है उनके लिए, क्योंकि पहली बार ये टीम यहां तक पहुंची है। ग्रुप स्टेज में इस टीम ने स्पेन और उरुग्वे को रोका था, इस बार अर्जेंटीना है उसके सामने। ये मैच आप लोग एमबीसी स्पोर्ट्स 11 पर देख सकेंगे सुबह 2 बजे, और सुबह 5:30 बजे कोलंबिया का मुकाबला गाना से होगा ग्रुप के में द काफे टोकोस। पहले पोजीशन पे आए थे ब्लैक स्टार्स, अपना टिकट बुक कर पाए थे अपने ग्रुप में, तीसरे स्थान पर आके इस टीम से बच के रहना होगा।

0: अब हम एक ऐसे शिल्पकार से मिल रही हैं जो टेक का ठेकेदार बन गई हैं और आज एक ऐसी स्टार्टअप का नेतृत्व कर रही हैं जिसे निवेशकों के बीच पहले से ही सफलता मिल रही है। क्राफ्टी एक संस्थापक के संस्थापक ब्रूनो लुगाल ने अपनी स्टार्टअप के लिए पहले ही 7 मिलियन रुपए का निवेश जुटा लिया है क्योंकि उन्हें समय पर सही मार्गदर्शन मिला। शहजाद जुमन की रिपोर्ट पर ये विवरण। ब्रूनो लुगाल और उनकी पत्नी एवास किचन नाम से सूप तैयार करती हैं। रेसिपी हो या उत्पादन दोनों इस काम में पूरी तरह दक्ष हैं। लेकिन बढ़ते ऑर्डरों के साथ स्टॉक, ग्राहकों और संचार का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बन गया है। ब्रूनो का तकनीकी उद्यमिता का अनुभव ही उन्हें एक ऐसा ऑल इन वन सॉफ्टवेयर बनाने की प्रेरणा बना जिसका नाम है क्राफ्टी।
1: Il y a plein d'outils qui existent, mais c'est souvent des outils qui sont faits par les techs pour les techs ou par les techs pour les techs sa vie, mais pas pour les gens.
0: ऐसे कई सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जो आमतौर पर टेक्नोलॉजी पेशेवरों द्वारा टेक उपयोगकर्ताओं के लिए बनाया गया है, पर ऐसे भी लोग हैं जो हाथ से काम करते हैं और उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं, इसलिए एक ऐसा माध्यम ढूंढना पड़ा जो व्हाट्सएप की तरह वॉइस नोट या मैसेज भेज सकते हैं। असतन जो है वो ठेकेदार के लिए सभी प्रशासनिक और कमर्शियल कार्य करते हैं जबकि ठेकेदार पूर्ण रूप से उत्पादन पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। शुरुआत में व्यक्तिगत जरूरत से जन्मी ये स्टार्टअप आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है। केवल 6 महीनों में ब्रूनो लुगाल अपने प्रोजेक्ट के लिए लगभग 70% वित्त पोषण जुटाने में सफल रहे। पहले चरण के लिए मुझे 10 बिलियन रुपए की आवश्यकता थी, फिलहाल केवल 7 बिलियन रुपए तक पहुंच पाए हैं जिससे सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर पाऊंगा। इसके बाद दूसरे चरण के अंतर्गत 3-7 बिलियन रुपए तक का बंदोबस्त करना होगा जिससे धीरे धीरे सॉफ्टवेयर का विकास कर पाए। विचार ब्रूनो का था लेकिन इसे एक सफल व्यवसाय में बदलने के लिए उन्हें लैपलाश फैक्ट्री का सहयोग मिला। इस इंक्यूबेटर ने परियोजना के हर चरण में उनका मार्गदर्शन किया। इसी के माध्यम से उनकी मुलाकात एक मेंटर से भी हुई जिन्होंने शुरुआत से उनका साथ दिया और कारोबार को खड़ा करने में मदद की। आज सुबह भी ब्रूनो की अपने उसी मेंटर लैपलाश फैक्ट्री के संस्थापक मिशेल कोदानी के साथ ऑनलाइन बैठक हुई।
2: C'est-à-dire que à la fois on a des nouveaux investisseurs qui s'intéressent au projet et qui deviennent des membres donc du syndicat mais aussi de qui vont investir dans le programme d'autres projets.
0: इसी तरह किसी भी स्टार्टअप की सफलता में इंक्यूबेटरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 8-9 महीनों तक चलने वाले इंक्यूबेशन अवधि के लिए सहायता प्रदान करते हैं जहां ठेकेदार को परियोजना की नींव रखने में मदद करते हैं। बिजनेस डिजाइन, मार्केटिंग, परियोजना का विकास कैसे करें, कैसे संसाधन बनाना चाहिए, ये सब जानकारी देते हैं। अंत में फंड कैसे जुटाना चाहिए ये भी बताते हैं। लैपलाश फैक्ट्री अपने प्रत्येक समूह की लगातार निगरानी करती है और जिन स्टार्टअप्स की नींव मजबूत होती है उन्हें आगे बढ़ाने के लिए विशेष एक्सेलरेशन कार्यक्रम भी उपलब्ध कराती है। इस वर्ष इंक्यूबेशन कार्यक्रम में शामिल 14 संस्थापकों में से 4 पहले ही इस अगले चरण तक पहुंच चुके हैं। घरेलू हिंसा के खिलाफ लड़ाई ने एक नया कदम आगे बढ़ाया है। अब्यूज बिल में पीड़ितों की बेहतर सुरक्षा करने और हिंसा पहचानने के लिए कई उपाय पेश किए गए हैं जिनका पता मुश्किल होता है। इन उपायों में मनोवैज्ञानिक और आर्थिक हिंसा, घरेलू हिंसा के खिलाफ काम करने वाले गैर सरकारी संगठन और रेज ब्रेव गैर सरकारी संगठन एम्पावर और रेज ब्रेव गर्ल्स शामिल हैं। इस विधेयक का स्वागत उन्होंने किया। हिंसा के उन पहलुओं पर भी गौर

0: किया जा रहा है जो पूरी तरह से इसको हम अच्छी तरह से देख नहीं पाते हैं। इस पर क्रिस्टेली बॉस की रिपोर्ट पर ये विवरण।
1: घरेलू हिंसा केवल शारीरिक हमलों तक सीमित नहीं है। प्रस्तावित डोमेस्टिक अब्यूज बिल में ऐसी हिंसा के उन रूपों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है जो अक्सर दिखाई नहीं देते लेकिन पीड़ितों पर गहरा और दीर्घकालिक प्रभाव डालती है। इनमें आर्थिक और मानसिक उत्पीड़न भी शामिल है। एम्पावर गैर सरकारी संगठन की अध्यक्ष और वकील मोक्षदा पैतुब का कहना है कि भले ही इस प्रकार की हिंसा के स्पष्ट शारीरिक निशान न हो फिर भी उचित साक्ष्यों के आधार पर इन्हें अदालत में सिद्ध किया जा सकता है। तलाक या सेपरेशन की स्थिति में देखा गया है कि हिंसा करने वाले सबसे पहले आर्थिक नियंत्रण करते हैं जहां वे खाने पीने के लिए पैसा देना बंद कर लेते हैं और महिला के पास अपने बच्चे की शिक्षा स्कूल इत्यादि जारी रखने के लिए आर्थिक माध्यम नहीं है। पर अब इस तरह की हिंसा के खिलाफ भी अदालत में ऑर्डर प्राप्त कर सुरक्षा प्राप्त कर सकती हैं। मनोवैज्ञानिक हिंसा के कई पहलुओं को अब परिभाषित किया गया है। सबसे बड़ा पहलू नियंत्रण और नियंत्रणकारी व्यवहार जहां इस प्रकार से मानसिक तौर पर पीड़ित से हेरफेर यानी मैनिपुलेशन किया गया हो कि जो उससे कहा जाता है वह करती है। महिलाओं और पुरुषों दोनों को ये समझना चाहिए कि ये आम बात नहीं है।
2: Et bien, les femmes, elles comprennent. Et bien, les hommes aussi, elles comprennent. Que ça, c'est pas normal.
1: जब घरेलू हिंसा होती है तो उसके सबसे अधिक प्रभावित होने वालों में बच्चे भी शामिल होते हैं। बच्चा घरेलू हिंसा का शिकार तब बनता है जब ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां वह परिवार और घर का हिस्सा होता है जहां सब कुछ वह देखता है सुनता है और जिसका उस पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। इसमें जरूरी बात ये है कि यहां बच्चे की सुरक्षा की बात हो रही है जो एक अतिरिक्त सहायता है जो चिल्ड्रंस एक्ट को प्राप्त हो रहा है। ये साथ साथ चलता है। हम इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट के लिए भी आवाज उठा रहे हैं जो प्रोटेक्शन ऑर्डर से जुड़ा होगा। इस विधेयक में डिजिटल माध्यम से होने वाले नए प्रकार के दुर्व्यवहार को भी अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके तहत साइबर उत्पीड़न यानी हरासमेंट तथा किसी साथी को अपमानित करने के उद्देश्य से आपत्तिजनक या निजी सामग्री भेजना या प्रसारित करना अब दंडनीय अपराध माना जाएगा।
0: फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन द्वारा की जाने वाली बैंकिंग सीक्रेसी के उपवादों का विस्तार किया जाएगा। सरकार ने बैंकिंग एक्ट में संशोधन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य कानून में सामंजस्य स्थापित करना है। यासीन तेनमामो की रिपोर्ट पर यह विवरण।
1: अप्रैल से यदि FCC को संदेह होता है कि कोई संपत्ति अवैध गतिविधियों से अर्जित की गई है तो वह सीधे किसी बैंक से ग्राहक उसके खातों और लेन देन से जुड़ी जानकारी मांग सकती है। संबंधित बैंक को 48 घंटे के भीतर मांगी गई सभी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। हालांकि बैंकिंग एक्ट अब भी वित्तीय संस्थानों पर गोपनीयता बनाए रखने की जिम्मेदारी डालता है। ऐसे में इन प्रावधानों के बीच सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक हो गया है। ये सुधार कोई नई बात नहीं है। ये पहले से ही एसेट रिकवरी एक्ट में मौजूद था। इसके तहत एसेट रिकवरी इन्वेस्टिगेशन डिवीजन जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के तले कार्यरत था किसी भी जांच के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जांच के चलते बैंक स्टेटमेंट पाने के लिए अपील नहीं करना पड़ता था। पर जब से एसेट रिकवरी इन्वेस्टिगेशन डिवीजन FCC के तले आ गया इसका FCC एक्ट में कोई प्रावधान नहीं था। इन अधिकारों का इस्तेमाल केवल संपत्ति की वसूली से जुड़ी जांच के दौरान और तभी किया जा सकता है जब कानून में निर्धारित सभी शर्तें पूरी होती हों। ये अपील करने के लिए एक केस का दायर होना जरूरी है और जिसकी जांच चल रही हो। ऐसे मामले में ही हम एक वित्तीय संस्थान से मांग कर सकते हैं। कई स्तरों पर स्वीकृति प्राप्त करनी होती है, रिकॉर्ड होना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि क्या इस वित्तीय संस्थान से ये जानकारी मांगना जरूरी है या नहीं। ये कार्रवाई कई विभागों से गुजरती है जहाँ हमें सुझाव प्राप्त होता है कि किसी विशेष जाँच के लिए इन जानकारियों की जरूरत पड़ रही है। ये बदलाव 2027 समय प्रस्तावित इसाम LG की म्यूचुअल इवैल्यूएशन से पहले वित्तीय अपराधों के खिलाफ व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में उठाया गया अहम कदम है।
0: मंत्री परिषद ने हाल ही में विश्वविद्यालयों में HIV रोकथाम कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इसमें जागरूकता बढ़ाना, मुफ्त और गोपनीय स्वैच्छिक जांच और जल्द ही प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस प्रेप तक पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है।

0: ये पहल मुख्य रूप से युवाओं पर केंद्रित है क्योंकि पिछले दो वर्षों में मॉरिशस में सामने आए नए संक्रमणों में से एक तिहाई से अधिक मामले 25 से 34 आयु वर्ग के हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर छात्रों को जांच के लिए प्रेरित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। समय के साथ ज्ञान का स्वरूप नहीं बदलता, लेकिन उसे समझने और नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के तरीके अवश्य बदलते हैं। इसी सोच के साथ गोरखपुर का प्रतिष्ठित गीता प्रेस पहली बार भगवद गीता का एक विशेष त्रिभाषी संस्करण लेकर आ रहा है, जो संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी को एक ही ग्रंथ में समाहित कर आध्यात्मिक ज्ञान को अधिक व्यापक और सुलभ बनाने का प्रयास है। विधि मासिब्रन का विवरण।
1: शास्त्र नहीं बदलते, केवल हमारे पढ़ने का तरीका बदलता है। प्रकाशन के एक सदी से अधिक के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण में गोरखपुर के गीता प्रेस ने पहली बार भगवद गीता के एक त्रिभाषी संस्करण की घोषणा की है, जिसमें संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी को एक ही खंड में एक साथ लाया गया है। प्रत्येक श्लोक में मूल संस्कृत पाठ, अंग्रेजी लिप्यंतरण यानी ट्रांसलिटरेशन और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में व्याख्याएं शामिल होंगी। प्रकाशक के अनुसार ये संस्करण विशेष रूप से युवा पाठकों और देवनागरी लिपि से परिचित न होने वाले लोगों के लिए डिजाइन किया गया है।
2: नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को,
3: दिस बुक इज बीइंग ब्रॉट आउट स्पेशली विद द यंगर जनरेशन इन माइंड। द एंटायर बुक विल बी प्रिंटेड ऑन आर्ट पेपर एंड इट विल आल्सो फीचर इलस्ट्रेशन रेलेवेंट टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्सेस। दिस इज आवर इनिशिएटिव एंड प्लान टू पब्लिश इट हैज नाउ बीन ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड। वी एक्सपेक्ट टू रिलीज इट वेरी सून एंड वी आर कॉन्फिडेंट दैट पीपल विल अप्रिशिएट इट।
1: उच्च गुणवत्ता वाले आउट पेपर पर मुद्रित और श्लोकों के संदर्भ से मेल खाते चित्रों के साथ ये पुस्तक आकर्षक प्रस्तुति के साथ सुलभता को जोड़ने का प्रयास करती है। गीता प्रेस जल्द ही इस विशेष संस्करण को जारी करने की उम्मीद करता है, जिसकी कीमत अभी तय की जानी बाकी है।
0: फ्रांस ने कहा है कि जून में यूरोप में आई भीषण गर्मी के अंतिम सप्ताह के दौरान उसने 2000 से अधिक मौतों में वृद्धि दर्ज की है, जबकि मौसम वैज्ञानिकों ने अगले कुछ दिनों में महाद्वीप में और अधिक चरम तापमान की चेतावनी दी है। इसके साथ पेश हैं कुछ अन्य विदेशी खबरें इस रिपोर्ट में विधि वासुबरन के साथ।
1: यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने गुरुवार को कीव पर रूस के हमलों, जिनमें कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए, का बदला लेने की कसम खाई। उन्होंने हमले में आंशिक रूप से नष्ट हुई एक अपार्टमेंट इमारत का दौरा करते हुए ये बात कही। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमनेई का जनाजा और सार्वजनिक शोक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो उनके गुजरने के कई महीने बाद हो रही है। अयातुल्ला अली खमनेई की हत्या 28 फरवरी 2026 को तेहरान में एक हवाई हमले के दौरान हुई थी। वेनेजुएला में आए दोहरे भूकंप के बाद ढही एक इमारत के मलबे में 8 दिनों तक फंसे रहने के बाद एक व्यक्ति को जीवित बचा लिया गया है। मध्य दमिश्क के एक भीड़ भाड़ वाले कैफे में हुए बम विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी समूह ने नहीं ली है। संयुक्त राष्ट्र ने गुरुवार को कहा कि सूडान में हुए एक ड्रोन हमले में दक्षिण कोडोफान में कमजोर समुदायों के लिए भेजी गई 50 मेट्रिक टन मानवीय सहायता नष्ट हो गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला के घातक प्रकोप के लिए जिम्मेदार वायरस के संभावित उपचारों का परीक्षण शुरू हो गया है। WHO प्रमुख ने गुरुवार को बताया कि कोंगो में पहले मरीज को इस परीक्षण में शामिल कर लिया गया है। WHO के अनुसार कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में अब तक 1400 से अधिक मामलों और 438 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। पिछले महीने रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद दक्षिणी फ्रांस में जंगल की आग से निपटने के लिए लगभग 3000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और पानी गिराने वाले विमानों को तैनात किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर मध्यम से तीव्र बारिश की संभावना जताई गई है। मुंबई में मानसून की भारी बारिश जारी है। मध्य प्रदेश मानसून सीजन के अपने पहले रेड अलर्ट के दायरे में है। ये अलर्ट 19 जिलों के लिए जारी किया गया है और मानसून की शुरुआत के बाद से ये अब तक की सबसे गंभीर चेतावनी है, जबकि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में मानसून की भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से नेशनल हाईवे 5 अवरुद्ध हो गया है, जिससे कई वाहन फंस गए हैं।
0: इसके साथ अब हम बढ़ते हैं मौसम के हाल की ओर। आम हालत, हमारे इलाके पर हल्की सी सामान्य हवा का बहाव है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, हवादार इलाकों में रात के दौरान

सो वेल ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके लिए चलते रहेंगे ऑन द वेव्स ऑफ आरएम टू रेडियो मस्ती. स्टूडियो में आ गई है दिव्या जो आपको एंटरटेन करने वाली है कुछ और प्यारे गानों के साथ. सो स्टे कनेक्टेड, हैव अ वंडरफुल फ्राइडे इवनिंग हमारे इन प्यारे गानों के साथ. फॉर नाउ वी हैव द स्पेशल वन हमारे सभी लिसनर्स के नाम. हैव अ ग्रेट फ्राइडे इवनिंग आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ.

0: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसा।
1: पुराने गाने सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते।

0: रही हो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: फिल्मी जाम
1: रेडियो मस्ती।
2: बिल्कुल बिल्कुल, आपको यहाँ पर हम इनविटेशन दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं कि आप भी आओ हमारे साथ, क्योंकि इट्स गोना बी अ वंडरफुल म्यूजिकल राइड टिल 9 PM, जहाँ पर दिव्या का साथ है इन फिल्मी जाम। ट्रैफिक जाम के बारे में बात करें तो रुक रुक कर गाड़ियाँ तो ज़रूर चलती हैं फ्राइडे इवनिंग को, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियाँ निकल जाती हैं रास्ते पर। शायद आप लोग घूमने जा रहे हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अनएक्सपेक्टेड प्लान्स बन गए हैं, मूवी देखने जा रहे हैं आप लोग, रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल चुके हैं। जो भी आपने प्लान किया है, आज हर एक मोड़ पर हम साथ निभाने वाले हैं टिल 9 PM, इतना वादा तो जरूर करते हैं। ऑलराइट, इट्स योर फिल्मी जाम जहां पर दिव्या का साथ है, एंड यहां पर गानों का ट्रैफिक जाम तो बिल्कुल होने वाला है, क्योंकि एक से बढ़कर एक गाने हम लेकर आए हैं आपके लिए टू गेट यू इन द फ्राइडे मूड। और फ्राइडे इवनिंग में सब लोगों की हंसी ये देखने लायक है, क्योंकि आप लोग उठते ही ना राहत की सांस लेते हैं नोइंग दैट कि आज फ्राइडे है, और फ्राइडे इवनिंग को तो सब लोग वीकेंड का इतना धूमधाम से वेलकम करते हैं कि क्या ही कहे। तो चलिए, आपकी हर एक खुशी में हम भी शामिल हो रहे हैं। थैंक यू कि आप लोग ऑलरेडी एडवांस में हमारे इस फ्राइडे इवनिंग को इतना मज़ेदार बना रहे हैं और धमाकेदार बना रहे हैं आपके मैसेजेस से। तो कीप ऑन सेंडिंग योर मैसेजेस, डोंट फॉरगेट, जो भी आप लोग इस वक्त कर रहे हैं, वी विल डेफिनेटली लाइक टू नो कि हाउ यू आर स्पेंडिंग योर फ्राइडे इवनिंग। सो वेटिंग फॉर योर मैजिकल मैसेजेस ऑन the magical number that is 5499 1294, 5499 1294, इस नंबर पर आपका हम इंतजार कर रहे हैं। तब तक के लिए आप गीतों को एंजॉय करते रहिएगा और साथ में आपके मैसेजेस

0: बिल्कुल आनी ही चाहिए।
1: फिल्मी जान
2: RM2 रेडियो मस्ती।
3: दिस इज समथिंग

फिल्मी जाम OMG रेडियो मस्ती. Well, 7:21 हो चुके हैं. वंस अगेन अ वार्म वेलकम ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती. टोल दोस जिन्होंने अभी अपना रेडियो ऑन किया है, आई एम वेरी श्योर दैट यू गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन, क्योंकि 9 बजे तक ऐसे ही धमाकेदार गाने आपके लिए.

0: हम पेश करते रहेंगे और वैसे ही अगर सब कुछ फर्स्ट क्लास नहीं है तो इसको फर्स्ट क्लास बनाइए एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स विद यू एंड विद इन यू और सब माइंडसेट का खेल है. अगर आपको लगता है कि सब कुछ फर्स्ट क्लास है तो ऐसा ही होता है और इसके लिए थोड़ा बहुत मेहनत तो आपको करना ही करना है. एंड चलिए अभी के लिए हम आप लोगों के लिए तो जितना हो सके मेहनत कर करके एक एक गाने चूज करके लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए ताकि यू हैव अ वंडरफुल एंड अ ब्लास्ट फ्राइडे. एंड चलिए यहाँ पर अगला गाना खास तौर से हम ज़रूर डेडिकेट करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो कनेक्टेड हैं हमारे साथ. एंड यहाँ पर आप कहते हैं कुड यू प्लीज़ प्ले हैप्पी बर्थडे फॉर कमला सुक. एंड आई डोंट नो अगर आपका यहाँ पर मैसेज इनकम्प्लीट आया है, मे बी आपका सरनेम या आपका नाम कम्प्लीट नहीं आया है. क्या है ना कि कभी कभी टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं नॉर्मल मैसेजेस के ज़रिए, तो अगर पॉसिबल हुआ तो डू सेंड योर मैसेजेस वंस अगेन व्हाट्सएप पर. नंबर तो वही है 5499 1294. Hi, dedicating the next gana to my mom celebrating her 76th birthday today. Best wishes from teen betiyan किरण, राधा, श्वेता और उनकी पोती है वंशिका. एंड आपका भी मैसेज यहाँ पर आधा अधूरा आया है तो प्लीज़ अगर पॉसिबल हुआ आपके इस मैसेज को कंप्लीट करने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज़ हमें आप याद करें ऑन व्हाट्सएप. एंड जैसे हमने कहा नंबर तो वही है. चलिए यहाँ पर टू ऑल दोज लिसनिंग टू अस राइट नाउ, थैंक यू सो मच कि आप लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ ऑन फ्राइडे इवनिंग जहाँ पर सब लोग इतने बिजी होते हैं किसी के पास टाइम नहीं होता है. अगर आप निकल चुके हैं कहीं पर घूमने के लिए तो आप ऑलरेडी देख ही रहे हैं कि बाहर कितनी भागा दौड़ी है, मतलब एक एक करके इतनी सारी गाड़ियां निकल चुकी हैं और किसी के पास टाइम नहीं है. लेकिन थोड़ा सा आप ठहर जाइए और खुद के लिए टाइम बनाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और आपको यह एहसास दिलाने के लिए हम हैं टाइम टू टाइम कि खुद के लिए मी टाइम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो जितना हो सके हमारी गीतों को एंजॉय कीजिए एंड बस आप इमेजिन कीजिए कि आप एक स्टेज पर हैं और सारे लोग आपको देख रहे हैं. ऑल यू हैव टू डू इज कीप ऑन डांसिंग एज इफ नोबडी इज वॉचिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चलिए कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे.
1: फिल्मी जान
2: RM2 रेडियो मस्ती.

0: Bollywood.
1: Radio must be.

0: फिल्मी जैम
1: ओएमजी रेडियो मस्ती
2: वेल एक बार फिर से बढ़ते हैं आपके कुछ मैसेजेस की ओर जो आपने हमें बहुत ही प्यार से भेजे हैं. गुड इवनिंग ऋषि विदेशी, थैंक यू सो मच. एज यूजुअल आपकी मैसेजेस तो हमेशा पहुंच ही जाते हैं हम तक. नेक्स्ट गाना टू ऑल द वाइव्स हु आर रिटर्निंग टू देयर पेरेंट्स हाउस विद देयर हस्बैंड आफ्टर वन वीक ऑफ विदाई. चलिए आप कितने थॉटफुल हैं उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं जिनकी हाल ही में शादी हुई है, तो चलिए उनको बहुत बहुत सारा प्यार टू दोस्त जिनकी शादी हो चुकी है या फिर वीकेंड के दौरान होने वाली हैं. एंड चलिए यहाँ पर आपको भी रॉकिंग फ्राइडे इवनिंग. एंड साथ में यहाँ पर आप कहते हैं ऑल्सो फॉर माई मूडी गर्लफ्रेंड एंड अ लवली फ्रेंड हु इज़ गोइंग टू बी अ बर्थडे गर्ल ऑन द 22nd ऑफ जुलाई. चलिए उनको जब टाइम आएगा तो बिल्कुल हम विश करेंगे. हेलो, वॉन्ट टू डेडिकेट A very happy birthday to Ashwin of Khevkia from wife Reshma. Unki beti hai Ishita, beti hai Umesh, Manish. Unko bahut bahut sara pyar and wishing him a good health. And saath mein yahan par aap kehte hain namaste ji. It's an immense pleasure listening your so sweet voice. Thank you so much. It means a lot jab aapke itne khoobsurat and pyare messages aate hain. Isse saaf aapka pyar jhalakta hai aur सीधा जाकर दिल तक पहुंच जाता है. तो चलिए आप प्लेलिस्ट को बहुत ही पसंद कर रहे हैं. रोनीत, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए. एंड चलिए जितने भी सारे लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं आपके लिए भी ये अगला गाना खास तौर से. एंड ऐसे ही साथ देते रहिएगा 9 बजे तक नॉनस्टॉप आप लोगों के लिए कुछ रॉकिंग धमाकेदार गाने सुनते और सुनाते रहेंगे. और आप ऐसे ही बस सुनते रहिए एंड कीप ऑन ड्रॉपिंग योर मैसेजेस ऑन 5499 1294
0: Filmy Jam
1: RM2 Radio Musti

0: फिल्मी जान
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: ईद यूंगे किंग खान जयो हनी सिंगर

फिल्मी जाम रेडियो मस्ती। वेल 7:50 हो चुके हैं आपके, कुछ और मैसेजेस की ओर बढ़ते हैं। नमस्ते जी, आज विद्या बिमल का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू विद्या जी, ब्लेसिंग्स कमिंग फ्रॉम सासुमा अनीता बिहारी, बिमल फैमिली, बगन फैमिली और साथ में आप हैं सुया बिहारी ऑफ कुंगुमा। थैंक यू सो मच सुया जी साथ देने के लिए। हेलो, विशिंग अश्विन गोविंद माय सन इन लॉ ऑफ क्लिवक्यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड अ वंडरफुल ईयर अहेड, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू हिम, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम लीलावती मंगरा एंड निवास मंगरा की तरफ से उनको बहुत बहुत सारा प्यार। चलिए यहाँ पर सुनील जी आप कनेक्टेड हैं हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम त्रियोले, आपके इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। और बहुत ही प्यार से आप अगला गाना खास तौर से अपने गर्लफ्रेंड के लिए डेडिकेट कर रहे हैं और मैं देख रही हूँ बहुत सारे मैसेजेस हैं जो आप उनके लिए एक एक करके भेज रहे हैं, तो थैंक यू सो मच आपके इतने सारे मैसेजेस के लिए। एंड चलिए नेक्स्ट गाना स्पेशली आपके नाम सुनील जी एंड फॉर विदुषी हम ज़रूर डेडिकेट करना चाहेंगे अगला गाना, लगता है कि आप उनको बहुत ही याद करते हैं। बोलो जो इस वक्त आप भी अगर किसी खास को याद करते हैं तो हम तक अपना मैसेज ज़रूर पहुंचाइए। एंड बस हम जानना चाहते हैं कि इस फ्राइडे इवनिंग को आप किसको मिस कर रहे हैं, और भले ही आज पार्टी मूड जारी है लेकिन फिर भी प्यार तो कम नहीं होता है। एंड आप ज़रूर अपने मैसेजेस हम तक पहुंचाइए ऑन 5499-1294। फिल्मी जाम RM2 रेडियो मस्ती।

0: फिल्मी जैम OMG रेडियो मस्ती
1: हाय देखिए अभी दिव्या के बाद ऑलरेडी इतने सारे गाने भी आ चुके हैं हमारे साथ साथ और हमारी प्लेलिस्ट को देखकर मुझे इतना मजा आ रहा है आई कांट वेट कि आप लोग कब हमारे सब गानों को सुनेंगे और साथ में ट्राई टू वाइब विद ईच एंड एवरी गाने एंड थोड़ी देर में आपने सुना प्रियंका चोपड़ा फीचरिंग पिटबुल दैट वाज एक्सोटिक फॉर यू एंड चलिए ये बॉलीवुड है कुछ ऐसे हमारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस भी हैं जो गाने का शौक रखते हैं और कुछ कुछ लोगों को मौका मिल गया टू बी परफॉर्मिंग विद द इंटरनेशनल आर्टिस्ट और उनमें से एक हमारी प्यारी सी श्रेया घोषाल हाँ ये अलग बात है कि वो एक्ट्रेस नहीं है लेकिन शी इज़ द क्वीन ऑफ मेलोडी और उनका एक गाना भी है हमारी प्लेलिस्ट में जो आपको हम बाद में सुनाएंगे तो चलिए कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे एंड अभी दोपहर शुरू हुई है और आप बस सुनते रहिए एंड वी आर रिसीविंग योर मैसेजेस ऑफ कोर्स आपके मैसेजेस को हम वेलकम कर रहे हैं ऑन 5499124 इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल फ्राइडे इवनिंग व्हाट्स हैपनिंग ऑन योर साइड डू लेट अस नो वंस अगेन ऑन 5499124
0: Filmy Jam
2: RM2 Radio Musti
1: बिल्कुल डांस पे चांस आपको लेना है रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेना है

0: Filmi Jam.
1: OMG Radio Musti.
2: ऑल राइट 8:24 हो चुके हैं एंड चलिए आपके मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं. थैंक यू सो मच रेशमा. द नेक्स्ट गाना गुज आउट स्पेशली फॉर यू. पता नहीं क्यों जब भी कोई रेशमा हमें मैसेज भेजती है ना तो मेरे दिमाग में बस यही गाना आता है रेशमा. तो चलिए यहाँ पर आपके मैसेज के लिए थैंक यू सो मच रेशमा. एंड द नेक्स्ट ट्रैक गुज आउट स्पेशली फॉर योर कलीग्स फॉर ऑल योर फ्रेंड्स जो इस वक्त आपके साथ हैं. एंड कभी ऐसा होता है ना कि आप काम करते हैं देर रात तक और जब काम ख़त्म हो जाता है और अचानक से कलीग्स के साथ प्लान बन जाता है और आप घर जाने के बजाय कहीं और निकल जाते हैं. इसका मज़ा ही कुछ और होता है क्योंकि कभी कभी कलीग्स भी फैमिली से बढ़कर होते हैं. एंड इट्स रियली नाइस टू नो रेशमा कि आप लोग अभी अनएक्सपेक्टेडली कहीं घूमने जा रहे हैं और इसके बाद घर वापस जाएंगे. तो वेरी नाइस. तो आई जस्ट होप कि यू विल बी हैविंग अ ग्रेट ग्रेट टाइम विद योर कलीग्स. वैसे जिसके साथ हम बाहर घूमने जाते हैं वो कलीग्स से ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं और आई जस्ट होप कि आपके फ्रेंड्स हमेशा आपके साथ ऐसे ही रहे एंड यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद देम फॉर एवर. 8:25 हुए हैं एंड साथ में यहाँ पर अगला गाना खास तौर से हम दरीकेच करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो शायद फ्राइडे इवनिंग के लिए आप लोग नाइट शिफ्ट कर रहे होंगे. आप हमें सुन रहे हैं और हम बार बार यही कह रहे हैं कि कोई पार्टी करने जा रहा है, कोई अनएक्सपेक्टेडली रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहा है या फिर कोई ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल चुके हैं और आप लोग उधर बस मेहनत से काम कर रहे हैं और हमारे हर एक गीत को एंजॉय कर रहे हैं. तो आपको हम यही कहेंगे कि वी आर डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट यू एंड हर एक गाना आपके नाम भी है क्योंकि हम चाहते हैं आप म्यूज़िक के साथ जुड़े रहे एंड गुड म्यूज़िक के साथ आप जुड़े रहेंगे तो आपका काम भी ख़त्म हो जाएगा और हमारे गाने कभी ख़त्म नहीं होंगे. तो चलिए ऐसे ही नॉन स्टॉप ये खूबसूरत धमाकेदार गाने आप तक पहुंचाते रहेंगे टिल 9 PM. ऑफ कोर्स 9 PM के बाद कुछ और धमाकेदार गाने आप तक पहुंच ही जाएंगे लेकिन फिलहाल के लिए इट्स योर फिल्मी जाम जहां पर दिव्या का साथ है टिल 9 PM.
0: फिल्मी जाम
1: RMG रेडियो मस्ती.

0: फिल्मी जान
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: Well, this one's taken from the movie Rais. We have it in the beautiful voices of Pauni Pandey, Kalyan Ji, Anand Ji ka composed hua gana. वैसे ये रीमेक है, लेकिन फिर भी जब भी हम ओजी गाना सुनते हैं तो किस तरीके से हमारा फीलिंग्स उभर कर सामने आकर खिल ही जाता है। और कुछ कुछ ऐसे रीमेक बनाए गए हैं जिनको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये रीमेक भी ज़रूरी था। चलिए, वी हैव दिस ब्यूटीफुल वन स्पेशली डेडिकेटेड टू ऑल द RM रेडियो मस्ती लिसनर्स, इस वक्त हमें सुन रहे हैं।

Radio Musti. Well, 8:41 already and ये beautiful सा गाना खासतौर से उन तमाम लोगों के लिए जो आपने अभी अभी अपना रेडियो ऑन किया है. वैसे मूवी का टाइटल है वेलकम, लेकिन आपका भी हम एक बार फिर से वेलकम ही कर रहे हैं. जस्ट टू लेट यू नो दैट बस 15 मिनट बाकी ही हैं. जितना हो सके खूबसूरत धमाकेदार गाने को समेटने की पूरी कोशिश कर रही हैं. यहाँ पर किसी ने कहा है हेलो गुड मॉर्निंग. अजी गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग का टाइम हो चला है. एंड आपको भी गुड इवनिंग. एंड आपने कहा है आज आपके पोते कृष्णव प्रयाग का बर्थडे है, उनको बेस्ट विशेज फ्रॉम मामू अवीश. मॉम है अवीशा, अविनाश, आदु, करण, नानी लीला, दौलत फैमिली फ्रॉम प्लेंडी पपाई की तरफ से उनको बहुत बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएँ. And as usual, we have Shweta Hukum from Vanakkai. Want to dedicate a romantic gana? Abhi ke liye possible nahi hai, kyunki hum alag hi mood ke saath aaye hain. Kyunki aaj hai Friday evening. To Shweta, chalgi ye agla gana goes out specially for you and your beloved darling husband Roshan ke naam.

वेल 8:51 हो चुके हैं, दिल धड़कने दो. ऑफ कोर्स जब तक दिल धड़क रहा है, दिलों को और से जोर धड़काने के लिए वी हैव दिस ब्यूटीफुल गाने. चलिए एक बार फिर से सुनील जी या फतरियोले से, आपके मैसेजेस इतने सारे आते हैं कि क्या कहें. वेल थैंक यू आपके इतने सारे मैसेजेस के लिए, लेकिन इतने आप मैसेजेस भेजेंगे तो आप दूसरों को कब मौका देंगे. एक बार फिर से आपने विदुषी को याद किया है, क्या बात है. आपके मैसेजेस हमें मिलते हैं, लेकिन इतने सारे मैसेजेस, ओ हो, आप इतने सारे मैसेजेस भेजेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे. तो चलिए ये गाना गोज आउट स्पेशली फॉर यू, और आप हैं त्रियोले से, और यही गाना आपने डेडिकेट किया हुआ है फॉर ऑल रघुबीर फैमिली. थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए, एंड आपके बच्चों के नाम भी आपने डेडिकेट किया है. सो सुनते रहिए.

0: फिल्मी जान
1: RM2 रेडियो मस्ती
0: Well, friends, 8:56 already, and चलिए इसी के साथ it's a time for Divya to say goodbye to all of you. हमारी और आपकी मुलाकात होने वाली है कल सुबह. Yes, early morning आपसे मुलाकात करने वाली है Divya. तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, जा रही है एक बार फिर से वापस आने के लिए.
2: Mr. Worldwide.
0: तब तक के लिए take care, keep smiling, शुभ रात्रि, शब्बा खैर.

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विदिता। आप सुन रही हैं लेट नाइट ग्रूव्स सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती पर। भाई रात जवां है तो म्यूजिक भी फुल ऑन होना चाहिए, है ना। चलिए रेडी हो जाइए बॉलीवुड के सबसे धमाकेदार रिमिक्स ट्रैक्स के साथ। हम आ गए हैं आपको एंटरटेन करने के लिए।

तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो नाइट है वो काफी स्मूथ चल रहा है। चलिए, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप काम पर हैं या रिलैक्स मोड पे हैं। वैसे रिलैक्स मोड पे जरूरी नहीं है कि इंसान रोमांटिक गाने सुने। हाँ, रिलैक्स करने के लिए कभी कभी गाने कुछ ऐसे होने चाहिए जिससे आपको ऐसी वाइब्स मिले कि पूरा जो स्ट्रेस है आपका पूरे वीक का खत्म हो जाए। रेडियो मस्ती पर मैं विनीत आपका साथ दे रही हूँ। चलिए, इसी एनर्जेटिक बॉलीवुड रिमिक्सेस के साथ आपके चेहरे पे ले आते हैं स्माइल।

म्यूजिक को फील करते रहिए और स्माइल करते रहिए, क्योंकि ये है आपका लेट नाइट ग्रूव्स वेदिता के साथ। काम से घर वापस जा रहे हैं या घर से आप वापस काम पर जा रहे हैं, वैसे मूड अच्छा होना चाहिए। तो चलिए, आपके मूड पे ध्यान देते हुए हम कुछ और खूबसूरत गाने

You're listening to Late Night Grooves Vinita के साथ on Radio Masti. दोस्तों, म्यूजिक ही हर सफर को यादगार बनाता है, ये बात तो आप भी मानेंगे. मैं वेदिता आप सबो का एक बार फिर वेलकम करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जो कि है लेट नाइट ग्रूव्स. चलिए सीट बेल्ट लगाइए, एंजॉय कीजिए हमारे रॉकिंग बॉलीवुड रिमिक्सेस.

अरे दोस्तों, वीकेंड हो या वीकडे, गुड म्यूजिक का कोई टाइमिंग नहीं होता। ये है लेट नाइट ग्रूव विद वेदिता ऑन रेडियो मस्ती, जहां रात भर बजते हैं बॉलीवुड की बेस्ट रिमिक्स ट्रैक्स। तो चलिए मूड को और अपबीट बनाते हैं इस अगले गाने के साथ।

चाय कॉफी, हाँ अभी तो सर्दी के मौसम में यही चलेगा। चलो हेडफोन्स ऑन है, रेडियो मस्ती का साथ है तो ऐसा ही तो होगा, परफेक्ट लेट नाइट कॉम्बो। मैं हूँ वेदिता और अब आपके लिए कुछ और ऐसे खूबसूरत गाने लेकर मैं आई हूँ जिसे सुनकर अभी आप बैठोगे नहीं, डांस करना शुरू कर दोगे, तो देर किस बात की है, चले शुरू करते हैं ना।

मेकिंग रेडियो मस्ती अ पार्ट ऑफ योर नाइट, फॉर मेकिंग अस पार्ट ऑफ योर लाइफ. मैं हूं वेदिता, आपके लिए लेकर आई हूं बैक टू बैक बॉलीवुड रिमिक्सेस, और आपको बस हमारे साथ स्टे ट्यून रहना है क्योंकि पार्टी अभी बाकी है मेरे दोस्त.

नींद आ रही है, ऐसे कैसे नींद आ सकती है हमारे ऐसे ज़बरदस्त बॉलीवुड रिमिक्सेस के साथ, इंसान को नींद कैसे आ सकती है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप अगर सो भी जाओगे ना तो आपकी जो बॉडी है वो नींद में भी आपसे डांस करवाएगी, क्योंकि हमारा जब लेट नाइट ग्रूव चलता है ना रेडियो मस्ती पर, तो कोई बैठा नहीं रहता, सब

तो दोस्तों आज के इस म्यूजिकल जर्नी में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच. मैं हूँ वेदिता, आप सुन रहे हैं लेट नाइट ग्रूव सिर्फ और सिर्फ आपके अपने रेडियो मस्ती पर. कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ और याद रखिए म्यूजिक कभी स्टॉप नहीं होता है. गुड नाइट, टेक केयर और मिलते हैं आपसे कल एक और ऐसे

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: ए जय माताजी, माताजी ने हम कहीं ने कहूँ कि वाह फरे वादल फरे ने वायरो फरे पण एक बार बोलिया पछी मारा मित्रों आ मित्रों कदी ना फरे के हालो ने

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: तो फाइनल है, कभी आई लव यू नहीं बोलना है, राइट?
4: राइट।
3: कूल। वैसे नेवर से आई लव यू को फ्रेंच में कैसे बोलते हैं?
4: Nadi
5: Jamais Je T'aime. Nadi Jamais Je T'aime. Ah, it's so sexy.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a Musti. Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

0: Radio Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

0: एक बात बताओ दोस्त।
1: बता बता जल्दी बता।
0: एक बार वो मुझे मिलने आई।
1: अच्छा?
0: मैंने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया।
1: फिर क्या हुआ?
0: उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल दी, बस दोनों देखते रह गए।